अरे आ गई भाई, मैं किसने कहा कि मैं नहीं आई, देखिए मैं आ गई, मैं यानी कि आरजे सिमी ओनली ऑन फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम। आज हमने बहुत सारी बातें की हॉबीज के बारे में, फिर उससे रिलेटेड हमने बात किया साइड हसल की, आजकल ये जो हॉबीज को हम मोनेटाइज करने लगे हैं काफी लोग, उसके बारे में बात की, और ये सब कुछ आता है फ्रॉम द सोशल मीडिया प्रेशर इन मोस्ट ऑफ द केसेस। तो अब उसके बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं कि सोशल मीडिया खोलते ही आप देखते हो कि किसी को प्रमोशन हुआ है, किसी ने नया बिजनेस शुरू किया है, किसी का साइड हसल पता चलता है आपको, उसने अनाउंस किया होता है, किसी ने पॉडकास्ट शुरू कर दिया है, किसी का एक अपना यूट्यूब चैनल है, किसी ने न्यू अचीवमेंट पे जो है अब डिस्क्राइब किया है कि अच्छा ये मिला, ये अवार्ड, ये रिकॉग्निशन, और देखते देखते ना हम अपनी लाइफ कंपेयर करने लगते हैं, एंड दिस इज वेयर वी गो रॉन्ग माय फ्रेंड्स, क्योंकि आप ये सोचने लगते हैं कि अरे यार मैं क्या कर रहा हूँ लाइफ में, मैं क्या कर रही हूँ, सब लोग कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मुझे भी कुछ अपना स्टार्ट करना चाहिए, मैं अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा या नहीं कर रही। लेकिन एक मिनट, आपको सोशल मीडिया पे किसी की अचीवमेंट तो दिख रही है, उनकी पूरी जर्नी नहीं दिख रही है, आपको उनका सक्सेसफुल बिजनेस दिख रहा है लेकिन शायद उनके फेलियर्स नहीं दिख रहे, आपको उनके फॉलोअर्स दिख रहे हैं लेकिन उनके आवर्स ऑफ वर्क नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो चीज किसी और को हैप्पीनेस देती है जरूरी नहीं कि वो आपको भी दे। अगर आपको कुछ करना पसंद है तो आप वो कीजिए, जरूरी नहीं कि आप देखा देखी कुछ करें। आपको गार्डनिंग पसंद है, आप गार्डनिंग करिए। आपको बुक्स पढ़ना पसंद है तो आप बुक्स पढ़िए। अगर आपको डांस करना पसंद है तो डांस कीजिए। हर चीज को कंटेंट बनाना जरूरी नहीं है, हर डिनर की फोटो पोस्ट करना जरूरी नहीं है, हर अचीवमेंट को अनाउंस करना भी जरूरी नहीं है, इट इज अप टू यू। और अगर आपको ये सब करना पसंद है तो भी कीजिए। अगेन मैं ये नहीं कह रही कि आपको रुकना चाहिए, अगर आपको अच्छा लगता है लोगों के साथ शेयर करने में हर चीज तो भी कीजिए, लेकिन सिर्फ इसलिए मत कीजिए क्योंकि सामने वाला कर रहा है।

यार हाई हील पे तो नच ले, लेकिन अगर पैर जरा मचके तब क्या करे? यू आर लिसनिंग टू आरजे सिमी ओनली ऑन फन एजर रेडियो. वक्त आ गया है गिव अवे राउंड का, तो बिल्कुल तैयार हो जाइए इसके लिए. एंड ये है फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स, और यहाँ पे आपको मिलेगा $10 का डिस्काउंट ऑन अ बिलिंग ऑफ $50. ये सिर्फ डाइन इन पे अवेलेबल है. और एक और रिक्वेस्ट है आपसे कि आप तभी इस गिव अवे में पार्टिसिपेट करें अगर आपने किसी और शो में फनेशिया के लास्ट एक महीने में ये गिव अवे ना जीता हो. आपको ना एक महीने में सिर्फ एक ही बार यहाँ पे विनर बनने का चांस मिल सकता है फॉर दिस चंडीगढ़ बाइट्स का गिव अवे. तो तैयार हो जाइए. बाय द वे मैं बता दूं कि ना चंडीगढ़ बाइट्स एंड कोई भी ऐसा रेगुलर सा रेस्टोरेंट नहीं है. यहाँ पे आपको हर दोपहर को लंच के टाइम पे एक्साइटिंग नई डिशेज मिलती हैं जो कि रोटेट होती रहती हैं. ये लोकेटेड है मैकडरमॉट ड्राइव इन एलन पे. और अगर आपको इस पे और डिटेल्स चाहिए तो आप इनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज chandigarhbites.com. और सवाल मैं पूछ लेती हूँ, बहुत ईजी सा है. आपको 3 सॉन्ग्स बॉलीवुड के मुझे ऐसे बताने हैं जिसमें एक वर्ड यूज हुआ हो, शायद वो वर्ड जो है पहले ही सेंटेंस में यूज हो गया हो, पहला उससे स्टार्ट होता हुआ सॉन्ग हो तो और अच्छा, लेकिन एटलीस्ट ट्राई करें कि एटलीस्ट वो पहले सेंटेंस में तो वो वर्ड यूज हुआ ही हुआ हो. और वो वर्ड है कभी. आपको कभी जो इस शब्द से गाने मुझे बताने हैं, एक नहीं 3 बताने हैं. कई बार मुझे फोन आते और एक गाना ही बता के आप रुक जाते हैं, ऐसा ना करें, मुझे 3 गाने बताएं, ठीक है? और नंबर है 972-235-5555.

ओके गाइज, इट्स टाइम कि मैं अनाउंस करूं आज का विनर. हमने आपसे पूछा था कि आपको तीन सॉन्ग्स बताने हैं जो कि रिलेटेड है फ्रॉम द वर्ड कभी, या तो वो उसे शुरू होता हो या फिर एटलीस्ट उसके फर्स्ट सेंटेंस में आता हो. बहुत सारे कॉल्स आए और अभी भी आ रहे हैं. आई एम वेरी सॉरी अगर मैंने आपके कॉल जो है पिकअप नहीं कर पाए, लेकिन थैंक यू सो मच फॉर द ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स. और सॉन्ग्स तो अभी मैं कभी कभी के बहुत सारे बजाने वाली हूँ बिकॉज दिस इज द सेगमेंट. लेकिन विनर पहले अनाउंस कर देते हैं. आज की विनर है राधा. कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है चंडीगढ़ बाइस की तरफ से $10 का डिस्काउंट ऑन अ बिलिंग ऑफ $50. डू एंजॉय, गो देयर, अच्छा अच्छा खाना खाइए और हो सके तो यही सॉन्ग्स एंजॉय कीजिए वहां पे भी. और आई रिसीव्ड अ लॉट ऑफ कॉल्स फ्रॉम अदर पीपल जैसे कि भाग्यश्री और अश्मीना, और सबने नो बहुत अच्छे से जो है और वो गा के जब बताते हैं ना मुझे कि कभी कभी है, तो मैं भी ऐसे सुनती रह जाती हूँ, मजा आ जाता है मुझे. तो बहुत प्यारे प्यारे लिसनर्स और बहुत प्यारे प्यारे कॉल्स आए. तो आप लोगों को मैं ये नेक्स्ट सॉन्ग डेडिकेट कर रही हूँ क्योंकि ये कॉमन था अमंगस्ट ऑल दी आंसर्स. दो तीन सॉन्ग्स थे जो सबने बताए. एक तो है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, और एक कभी कभी अदिति. तो आई एम गोना प्ले इट फॉर यू गाइज, आई होप यू लाइक इट.

0: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
1: Call 857-891-8942 today.
2: Ekta Mandir, DFW Hindu Temple Society presents Navaratri Mahotsavam, October 11th to 20th.
3: Daily Pujas, Aartis, Lalita Sahasranamam, Mahamangal Aarti, Mataji Puja, aur har sham 8:30 baje Ras Garba.
2: October 16th, 17th, Saraswati Puja aur Akshara Abhyasam.
3: October 17th, Mata Ki Chauki.
2: October 18th, Durgashtami Havan. Aur 20th, Ram Leela aur Ravan Dahan.
3: Visit hindutemple.org or call 972-445-3111.
4: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सस के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सस बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
5: एलविंग वालों, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
6: ये लास्ट दिवाली पहना था, ये नेहा की शादी में। इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है।
7: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
8: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
6: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
8: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
9: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
7: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
10: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
7: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
10: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
11: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
9: Happy hours, Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
11: Barista House, richness of biryani bliss.
12: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
13: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
14: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
15: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
14: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
16: फ्लोर्स क्लीन
17: चेक,
16: विंडोज क्लीन
17: चेक,
16: किचन क्लीन
17: चेक,
16: एयर डक्ट्स क्लीन।
17: वेट, एयर डक्ट्स भी क्लीन करना होता है?
18: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
19: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
3: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
19: नहीं।
3: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
19: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
16: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
20: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
21: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
22: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
23: Ready for a new opportunity and a fresh start in your career? We're looking for energetic and motivated professionals to join our team across multiple positions. If you have an experience in media, sales or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.

अब देखिए, अदिति के हंसने की और मुस्कुराने का तो मुझे नहीं पता, लेकिन आरजे सिम्मी हमेशा मुस्कुराती रहती है, हंसती रहती है और स्पेशली काफी खुश होती है अगर आपका कॉल आता है और आपसे बातें करने का जो है मौका मिलता है मुझे। और अभी अभी हमें धनजीत जी का फोन आया था और उन्होंने बोला है कि उनकी बेटियों का बर्थडे था रिसेंटली, श्रीजा और सानवी का। आप दोनों को अ वेरी हैप्पी बिलेटेड बर्थडे फ्रॉम आवर एंटायर फनेशिया टीम एंड ऑफ कोर्स फ्रॉम आवर लिसनर्स टू। और आप सेलिब्रेट कीजिए, कोई नहीं, बर्थडे नहीं, बर्थडे मंथ भी होता है, तो आपको अभी भी जो भी चाहिए ना, बिल्कुल अपने पापा को बोलिए और सब कुछ ले लीजिए। आई होप यू आर एंजॉयिंग योर बर्थडे मंथ। और अभी हमने बहुत सारी बातें की और ये जो सेगमेंट है उसको कंटिन्यू करते हैं। इस सेगमेंट में हम वो सॉन्ग्स बजा रहे हैं जो कि स्टार्ट हो रहा है आइदर विद द वर्ड कभी, या फिर एटलीस्ट फर्स्ट सेंटेंस में ये वर्ड आ रहा हो। तो जब हम बात कर रहे हैं कभी के बारे में और शाम भी हो रही है, तो कभी कभी शाम को ढल देना चाहिए, है ना।

0: देखिए बाकी शामों का नहीं पता, लेकिन सैटरडे की शाम 6 बजे प्लीज रेडियो पे आ जाना 104.9 एफएम फनेशा पे, तभी तो मैं आपसे बातें कर पाऊंगी बहुत सारी जो हम करते हैं फोन पे या फिर ऑन एयर भी। और अभी मैं बिजनेस ओनर्स के लिए ना कुछ खास बात लेके आई हूँ। अगर आपका स्टार्टअप है या फिर कोई वेल स्टैब्लिश बिजनेस है तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि मैंने देखा है कई बार जो है अगर आप एक कोई रील पोस्ट कर रहे हो, एड बना रहे हो और आप खुश हो जा रहे हो कि भाई यू नो यस मिलियन में व्यूज आ गए, काफी रीच अच्छी हो गई, कुछ लोगों ने क्लिक भी किया आपके एड्स पे कि एक्सप्लोर करने के लिए कि अच्छा क्या है प्रोडक्ट या सर्विस, लेकिन क्या आपको लग रहा है कि ये फाइनल कस्टमर्स हैं? ये आपको कैसे पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर जो आपने ब्रांडिंग की है या पर्टिकुलर एक एड दिया है उससे कितने लोग आपके एक्चुअल कस्टमर बने, ये कैसे पता चलेगा? ये आपको पता चलेगा स्मार्ट रीच एआई के थ्रू, जो कि एक फनेशन नेटवर्क का ही प्रोडक्ट है और आपको हेल्प करता है, आपकी मदद करता है पोटेंशियल लोकल कस्टमर से मिलने में, इवन वो सारे लोग भी जो आपके कॉम्पिटिशन के पास जा रहे हैं। अक्रॉस रेडियो, डिजिटल और स्ट्रीमिंग टीवी और ऑनलाइन ऑडियो के थ्रू ये इंगेजमेंट, ये भी रीच काफी बढ़ती है और सब कुछ डेटा एनालिसिस पे बेस्ड है। और आपको तो पता ही है डेटा इज द की आज की दुनिया में, और यही मैटर करता है कि कॉल्स, बुकिंग्स, ऑफर, रिडेम्पशंस और एक्चुअल विजिट जो है आपके बिजनेस के लिए कितना हुआ, ये सब कुछ ट्रैक करेगा स्मार्ट रीच एआई है ये, और आपके लोकल अटेंशन को आपके कस्टमर में बदलने में भी आपकी मदद करेगा। और चलिए इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं जहां हम वर्ड कभी से लेके गाने सजेस्ट कर रहे हैं, चाहे वो उससे शुरू हो रहा है या फिर उसके पहले सेंटेंस में वो वर्ड यूज हो रहा है कभी। और ऑन बिहाफ ऑफ मोस्ट ऑफ द वाइव्स, मैं ये नेक्स्ट जो सॉन्ग है वो काफी हस्बैंड्स को भी डेडिकेट कर रही हूँ, क्योंकि हमें ना ऐसे ही वाइब आते हैं यार आप लोगों से।
1: हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा हुमा

देखिए बाकी टाइम तो आप कहीं भी किसी से भी नजरें मिला सकते हैं, लेकिन अगर आप ड्राइव कर रहे हैं तो आपकी नजरें बिल्कुल रोड पे और ट्रैफिक लाइट्स पे होनी चाहिए, आसपास की गाड़ियों पे भी होनी चाहिए। ये नहीं कि पड़ोस में जो खूबसूरत महिला या फिर आपके मित्र बैठे हुए हैं उनको देख रहे हैं, नहीं नहीं, रोड पे ही देखिए आप, क्योंकि बहुत चांसेस होते हैं कि कार या ट्रक एक्सीडेंट हो जाता है अगर आपने ध्यान से ड्राइविंग नहीं की। लेकिन अगर ऐसा हो भी गया अनफॉर्चुनेटली कि आप तो अच्छे से ड्राइव करें लेकिन सामने वाले ने अच्छे से ड्राइव नहीं की लेकिन फिर भी एक्सीडेंट हो गया, इस केस में आप अटर्नी उमर ख्वाजा को रीच आउट कर सकते हैं, जो कि आपका केस मदद करेंगे आपको उसके केस को लड़ने में, और आप जो भी कॉम्पनसेशन डिजर्व करते हैं वो आपको बाकायदा मिल जाएगा, ये भी वो इंश्योर करेंगे। और इंश्योरेंस कंपनी की जो पूरी टेंशन है, जो भी उनकी लीगैलिटीज हैं, डॉक्यूमेंट्स है, बातें करके सब कुछ सॉर्ट करना है, ये भी उमर ख्वाजा और उनकी टीम कर देगी। आपको बस अपने फिजिकल और मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना है और आपको तब तक नहीं पे करना है जब तक कि आप प्रॉपरली कॉम्पनसेटेड नहीं हो जाते, जब तक कि आप केस जीत नहीं जाते। अगर आपको इनसे फ्री कंसल्टेशन लेना है फ्रॉम अटॉर्नी उमर ख्वाजा एंड हिज टीम, टू डू रीच आउट टू हिम ऑन 4693005046 या फिर आप विजिट कीजिए उनका वेबसाइट attorneyomer.com। और इस सेगमेंट का जहां पे हम कभी शब्द के अराउंड गाने बजा रहे हैं, उसका आखिरी सॉन्ग, क्योंकि टेक्सस में ना बादल बरसे ऐसा तो मुश्किल ही हो जाता है, तो कभी तो बरस जाओ, कभी, प्लीज प्लीज।

दिस इज आरजे सिम्मी एंड यू आर लिसनिंग टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम। और अगर आपका दिल डूबा है तो बिल्कुल चिंता ना करें, आपके दिल से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं उसका इलाज हो जाएगा पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर में। और अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है तो भी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि या फिर अगर आपका जो करेंट आपका जो भी हेल्थ है, हेल्थ केयर फैसिलिटीज है, अगर पैशन हेल्थ उसके आउट ऑफ नेटवर्क है उसके इंश्योरेंस के, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबल प्राइमरी केयर तो हर किसी को मिलना चाहिए और इसे इंश्योर कराया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर ने थ्रू देयर प्रोग्राम पैशन हेल्थ डायरेक्ट। और ये अवेलेबल है ओनली फॉर $85 अ मंथ, जहां पे इंक्लूडेड होगा प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ और भी बहुत सारी सर्विसेज जो आप कॉल करके पता कर सकते हैं। कॉल कहां करेंगे ये तो बता दो, इट इज 214666259, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी चले जाइए विच इज passionhealthphysicians.com। वैसे बता दो कि ये प्रोग्राम ना कोई हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है, ये एक तरीके का बस एक मान ले तो एक प्रोग्राम है, एक पर्टिकुलर प्लान है ऑफ हेल्थ फैसिलिटी जो आप अवेल कर सकते हैं, लेकिन कुछ एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस हैं जो यहाँ पे अप्लाई होती हैं, वो भी आप चेक कर ले। और ये फ्रिस्को लोकेशन में है, सैटरडेज और संडेज को भी ओपन होता है, तो कल जाना चाहे तो कल भी चले जाइए। और एक रिक्वेस्ट आई थी, बहुत प्यारी सी रिक्वेस्ट थी फ्रॉम बीनस टू प्ले अ सॉन्ग फ्रॉम कभी वर्ड, पर मैंने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की पर मुझे नहीं मिली, तो मैं उसकी जगह ना दूसरा सॉन्ग प्ले कर रही हूँ जो कि मेरी प्रॉब्लम को भी बता रहा है बीनस की, बहुत मुश्किल हो यार, नहीं मिली। सॉरी, आई होप दिस वन जो है नेक्स्ट सॉन्ग है वो आपको पसंद है।

सही बात है, दिल पे दिल आ जाए तो बड़ी मुश्किल हो ही जाती है, लेकिन कुछ चीजें बहुत आसान होती हैं, जैसे कि फनेशिया के गिव अवे राउंड्स। और जो अगला गिव अवे है वो काफी स्पेशल है, आपके जीतने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, क्योंकि इस बार हम सिर्फ एक नहीं, दो नहीं, पूरे 3 विनर्स चूज करने वाले हैं इन द नेक्स्ट गिव अवे राउंड। लेकिन उसके पहले एक छोटा सा प्यारा सा गाना, क्योंकि ये डील भी काफी वाव नहीं है क्या? Say whoa!

दोस्तों वाओ, तो आप कहने वाले हैं नेक्स्ट गिव अवे राउंड के लिए। जैसा कि मैंने बताया, मैं एक नहीं दो नहीं पूरे तीन विनर चूज करने वाली हूँ इन दिस राउंड जो भी शुरू होने वाला है। लेकिन आपको मिलेगा क्या ये तो बता दो भाई। राहत फतेह अली खान आ रहे हैं डैलस में फ्राइडे अक्टूबर 16th को 8:30 PM से इनका शो शुरू होगा एट कोमरिका सेंटर फ्रिस्को में। और अकेले नहीं, वो अपने बेटे के साथ आ रहे हैं, शहजमान अली खान उनका नाम है। और इस पूरे टूर का नाम है वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड 2026 बाय राहत फतेह अली खान। और ये शाम होने वाली है कव्वाली की, सूफी की, बॉलीवुड हिट्स की और टाइमलेस राहत फतेह अली खान की मेलोडीज की। मतलब व्हाई वुड यू मिस इट एंड व्हाई वुड यू मिस इट अगर आपको टिकट भी फ्री में मिल रही है भाई। और कराही पॉइंट की तरफ से मैं बता दूं, ये गिव अवे राउंड है, ये टिकट्स मिल रही हैं आपको। मैं एक सॉन्ग प्ले करने वाली हूं जो कि राहत फतेह अली खान जी का ही गाया हुआ है, और आपको बताना है कि किस मूवी से है वो। ईजी राइट? और हम तीन विनर चूज करेंगे इसके लिए। और नंबर है हमारे स्टूडियो का 9722355555। एक और बार बता देती हूँ, इट्स 9722355555। रेडी? ओके, दिस इज ऑन एयर।

तो आज का हमारा जो बैंगर गिव अवे सेशन था वो क्लोज होता है. हमने आज के 3 विनर चूज कर लिए हैं और ये राउंड था जहां आपको बताना था कि ये जो सॉन्ग मैं प्ले कर रही थी वो किस मूवी से था. द सॉन्ग वॉज ओरेपिया संग बाई राहत फतेह अली खान और ये था फ्रॉम द मूवी आजा नचले. कुछ लोगों ने तो एक्ट्रेस वगैरह के भी नाम बताए. सो स्वीट ऑफ यू गाइज, बहुत सारे कॉल्स आए हमें और आज के जो लकी 3 विनर्स हैं वो है संजय नंबर 1, नंबर 2 है नवीन और नंबर 3 पे है फसी. कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ यू गाइज. आपको मिलता है राहत फतेह अली खान का उनके कॉन्सर्ट का टिकट्स. तो आप जरूर इंजॉय करें. आई डोंट थिंक कि राहत फतेह अली खान का सॉन्ग जो है हम सबको बहुत पसंद है. आई डोंट थिंक कि कोई भी ऐसा बंदा होगा जिसको ये अपॉर्चुनिटी मिले और वो ना जाए. तो आपको मिली है, आप जरूर जाए. बेशक और भी अगर आपके दोस्त है, फैमिली मेंबर्स हो तो भी आप उन्हें ले जाए, इंजॉय कीजिए. और जिन लोग नहीं जीत पाए आप भी टिकट्स ले सकते हैं, आप भी वहां पे जाइए. ये हो रहा है एट कमोरिका सेंटर इन फ्रिस्को, मैं बता दू. और मीनवाइल मैं एक और प्यारा सा सॉन्ग बजाने जा रही हूँ राहत फतेह अली खान जी का, और रिक्वेस्ट कर रही हूँ संजय और नवीन से कि प्लीज कॉल मी बैक ताकि मैं आपसे कुछ और एडिशनल डिटेल्स भी ले लूँ. थैंक यू सो मच गाइस फॉर कॉलिंग एंड विनिंग दिस. Thank you.

You are listening to Funisher Radio 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी। अभी हम सॉन्ग सुन रहे थे तेरे वास्ते, फलक से मैं चांद लाऊंगा, 16-17 सितारे भी मांग लाऊंगा। लेकिन हमें चांद सितारे अगर आप नहीं भी ला पा रहे, कोई बात नहीं, थोड़ी नो रेयर चीजें हैं, अगर आप नहीं भी ला रहे पा रहे तो एटलीस्ट पीएमजे ज्वेल से जाके ब्यूटिफुल गोल्ड, डायमंड और ब्राइडल कलेक्शन जो वहाँ पे अवेलेबल है, नया नया फ्रिस्को में आया है विद देयर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सीलेंस और टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप वहां पे आपको देखने को मिल जाती है। डिजाइन्स काफी यूनिक हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर पीसेस मैंने तो खुद जाके देखा है वहां पे, और बहुत सारे रील्स भी उनकी देखी हैं। बहुत क्रिएटिव आई वुड से उनके डिजाइन्स हैं, तो डू गो देयर। ये लोकेटेड है मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में, और यहाँ पे ना हर एक ज्वेलरी एक कहानी बताती है।

देखिए, मैं आप लोगों में जुनून और जोश भर देना चाहती हूँ क्योंकि सैटरडे नाइट है। तो अब ये जो आखिरी 15 मिनट बचे हैं हमारे साथ, मैं उसमें ढेर सारे एनर्जेटिक और बॉलीवुड सॉन्ग्स, पार्टी सॉन्ग्स प्ले करने वाले हूँ। आई होप आप सबको मजा आए और आप भी ढेर सारी पार्टी कीजिए अगर आप कर पा रहे हैं तो, और नहीं कर पा रहे हैं तो इंजॉय कीजिए ये सॉन्ग्स। और एनर्जी की जब बात हो तो तारा कमर्शियल एनर्जी की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। सारे टेक्सास बिजनेस ओनर्स के लिए खास न्यूज़ है कि तारा कमर्शियल एनर्जी जो है अपने रेट्स के लिए पॉपुलर है, रिलायबल सर्विसेज के लिए पॉपुलर है और ये एनर्जी प्लान्स इनके कस्टमाइज भी होते हैं आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग। तो डू रीच आउट टू देम क्योंकि ये स्मार्टर कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन प्रोवाइड करने में आपकी बहुत मदद कर देंगे और इनके पास बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। 2002 से लेके और ये सारे बिजनेसेस को मदद करते आ रहे हैं तो आपकी भी कर देंगे। आप इन्हें कॉल कर सकते हैं 8444282808 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाइए विच इज taraenergy.com। और फिलहाल एंजॉय कीजिए द एनर्जेटिक सॉन्ग्स फ्रॉम आरजे सिमी।

13 साल से जो टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक आपकी कम्युनिटी की केयर करते आया है, अब वो एक ब्रांड न्यू नेम के साथ, एक ब्रांड न्यू लोकेशन जो कि है फ्रिस्को, और इनका नया ब्रांड का नाम है लनॉक्सी मेडिकल, और ये दिस इज फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। लनॉक्सी मेडिकल लेके आया है आपके लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, इन हाउस लैब टेस्टिंग, एक्सरे, सीटी स्कैन्स, कार्डियक डायग्नोस्टिक्स और तो और हिमालयन मेड स्पा सर्विसेज भी, ये सब कुछ एक ही छत के नीचे, ऑल अंडर वन रूफ। Yes, guys. और ये ना ऑपरेट करते हैं 7 days a week from 8 AM to 8 PM, तो आप कभी भी जाइए। और अगर आप अपॉइंटमेंट नहीं ले पाए हैं और सपोज कीजिए आपको कल जाने का मन है, क्योंकि ये तो संडे को भी खुला है, तो भी आप वॉक इन करके जा सकते हैं, आपको अपॉइंटमेंट की जरूरत नहीं है, आप कभी भी वॉक इन जाइए और वहाँ की फैसिलिटीज का यूटिलाइज कीजिए।

अब मेरे जाने का वक्त काफी करीब आ गया है एंड दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज प्राउडली ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, जो कि ऑफर करते हैं ट्रस्टेड टैक्स अकाउंटिंग, पेरोल, बुककीपिंग और भी बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज. अगर आप एक इंडिविजुअल हैं या फिर आपका कोई बिजनेस है, चाहे वो स्टार्टअप हो, वेल एस्टैब्लिश बिजनेस हो, कैसा भी हो, ये जो है अपने फाइनेंशियल एडवाइजरी से उसको बेटर करने में आपकी जरूर मदद करेंगे बिकॉज दे आर वेरी फेमस एजी फिनटेक्स. आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 8469942988 या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाइए विच इज agfintax.com.

0: उई अम्मा, आज सिमी तो चली गई। नहीं नहीं गई नहीं हूँ, आपको बाय बिना, बाय बोले बिना कैसे जा सकती हूँ, लेकिन वक्त हो गया है। आई होप कि आपको आज का शो पसंद आया हो। याद रखिएगा, जिंदगी में कितनी भी बिजी रूटीन क्यों ना हो, अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपके आरजे सिमी और आपसे विदा लेती हूँ इस वादे के साथ कि फिर मिलेंगे अगले सैटरडे 6 से 9 बजे तक सेम धमाके के साथ और बहुत सारी एनर्जी के साथ और बहुत सारी बातों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और सुनते रहिए फनेचर रेडियो 104.9 FM। बाय।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क। यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन।
2: ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax,
1: ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा,
2: इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
3: Funasia 104.9 FM. Turn up the volume.
4: Floors clean.
5: Check.
4: Windows clean.
5: Check.
4: Kitchen clean.
5: Check.
4: Air ducts clean.
5: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
6: बिल्कुल, जो दिखता है वो तो हम क्लीन कर लेते हैं, लेकिन जो नहीं दिखता उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business, Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
7: एलविंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है। Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken. We

0: tracks on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Phonasia.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये।

0: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को 10 AM टू 8 PM, मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका। चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट।
1: ब्रेकफास्ट में क्या खाना है?
2: कीमा पराठा।
3: मम्मी ऑमलेट पराठा।
4: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
1: अब संडे को 3 अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
5: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलीशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net।
6: एकता मंदिर DFW हिंदू टेंपल सोसाइटी प्रेजेंट्स नवरात्रि महोत्सव अक्टूबर 11th टू 20th।
7: डेली पूजा, आरतीज, ललिता सहस्रनामम, महामंगल आरती, माताजी पूजा और हर शाम 8:30 बजे रास गरबा।
6: अक्टूबर 16th 17th सरस्वती पूजा और अक्षर अभ्यासम।
7: अक्टूबर 17th माता की चौकी।
6: अक्टूबर 18th दुर्गाष्टमी हवन और 20th रामलीला और रावण दहन।
7: विजिट hindutemple.org और कॉल 972-445-3111।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Oora Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी।
12: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
11: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
12: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
13: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
7: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
14: Beta, 95% आए?
3: हाँ मम्मी।
14: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
15: मेरा?
14: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
15: वो
16: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG Fintechs helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintechs.com. Call 972-618-8555. AG Fintechs, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
17: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
18: That garba was totally worth it. We had so much fun.
3: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
18: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
19: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
20: बिंदास बोलो बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
1: जब गाना बोले बिंदास तो शांति होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर।
21: Don't miss out on the dance party of the year. Join the Club Fanasia Revolution and let the good times roll.

ताली चलते प्यार सोनिए, ताली चलते प्यार।

0: कस्टमर्स मैटर करते हैं. विद स्मार्ट रीच एआई रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो. मेजर कॉल्स बुकिंग्स रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स. विजिट smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
1: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन, डबल द फ्लेवर.
3: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
2: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं.
3: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी.
1: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड. बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर.
4: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
5: Your Honor, हजारों लोगों ने ऐड देखा.
4: Miss Clicks?
6: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
4: Customers कितने आए?
7: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
0: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With SmartReach AI, reach local customers, even competitive visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI, turn attention into customers. SmartReach AI,

0: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Products subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
1: That garba was totally worth it. We had so much fun.
2: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
0: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
3: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
4: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 682-551-6500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
5: इस साल तो कमाल हो गया हमारा रेवेन्यू डबल हो गया
6: सर अच्छा है लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया
5: नहीं
6: बुक कीपिंग अपडेटेड है
5: नहीं
6: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया
5: वो भी नहीं
6: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त
0: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो फॉर योर टैक्स प्लानिंग बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 AG Fintax Your growth, our strategy. AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
7: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
8: Bindas bolo. Bolo, bolo, bolo, bindas bolo.
9: Jab gaana bole bindas, to shaam bhi hogi bindas. Join Banda Bindas, Marvindas, Monday se Thursday from 5 p.m. to 7 p.m. for music, musti or full-on entertainment. Bindas Powered bolo. By Texas Star Rehab and Performance Center or Himalayan Bazaar. Sirf Vanisha Radio par.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
4: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
3: मिस क्लिक्स
5: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
3: कस्टमर्स कितने आए
6: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
5: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच AI रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो मेजर कॉल्स बुकिंग्स रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स विजिट smartreachai.us SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.
7: That garba was totally worth it. We had so much fun.
8: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
7: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
9: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
10: बिंदास बोलो बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो
11: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास जॉइन बंदा बिंदास मार्विन दास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फन एशिया रेडियो पर
12: Hey everybody, this is Asim and you're listening to the rocking music of my film only on Fun Asia Radio.

0: संगीत प्रेमियों को जगजीत सिंह का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त फन एशिया रेडियो की तरफ से।
1: Don't miss out on the dance party of the year. Join the club Fun Asia Revolution and let the good times roll.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
4: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
3: मिस क्लिक्स
5: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
3: कस्टमर्स कितने आए
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
5: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. स्मार्ट रीच AI, a Fun Asia Network product.
7: अजी सुनते हो
8: अजी नहीं एजी सुनते हैं
9: The OG of tax planning, AG FinTax. सुनेंगे आपके financial concerns, देंगे smart solutions. Every Friday 9:45 AM, only on Fun Asia Radio.
10: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट
12: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं तेलुगु में भी पंजाबी में भी और तमिल में भी तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
13: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net फन एशिया नेटवर्क वन नेटवर्क मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच

0: शाम भी होगी बिंदास. ज्वाइन बंदा बिंदास मारविंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सास स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ फनीशा रेडियो पर.
1: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो।
1: पंडित जी, दूल्हा है, दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले ले।
2: ये मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Facts Desi.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

104.9 FM Fun Asia Radio, Fun Asia Radio, non-stop entertainment.

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: बोरिंग दिनचर्या में
1: घोलिए नए रंग फन एशिया रेडियो के संग।
2: अरे ओ मोनालिसा।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
3: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
2: मिस क्लिक्स
4: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
2: कस्टमर्स कितने आए
5: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
4: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच एआई रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो measure calls bookings redemptions and actual visits visit smartreachai.us smartreachai turn attention into customers smartreachai a fun asia network product
6: this is Uday Chopra and you are listening to fun asia radio

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस कैंपेन का रिजल्ट
4: योर ऑनर हजारों लोगों ने ऐड देखा
3: मिस क्लिक्स
5: 100 लोगों ने क्लिक भी किया
3: कस्टमर्स कितने आए
6: एविडेंस फाउंड एक्चुअल कस्टमर विजिट इज लेस देन 10
7: मार्केटिंग में क्लिक्स नहीं कस्टमर्स मैटर करते हैं विद स्मार्ट रीच AI रीच लोकल कस्टमर्स इवन कंपेटिटिव विजिटर्स अक्रॉस रेडियो डिजिटल स्ट्रीमिंग टीवी एंड ऑडियो मेजर कॉल्स बुकिंग्स रिडेम्पशंस एंड एक्चुअल विजिट्स विजिट smartreachai.us SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Fun Asia Network product.
8: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
9: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री ब्रिंग योर फैमिली फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
10: बेटा 95% आए
11: हाँ मम्मी
10: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
12: मेरा
10: प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
12: वो
13: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटैक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज विजिट agfintax.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटैक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
14: रेडी फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटी एंड अ फ्रेश स्टार्ट इन योर करियर वी आर लुकिंग फॉर एनर्जेटिक एंड मोटिवेटेड प्रोफेशनल्स टू जॉइन आवर टीम अक्रॉस मल्टीपल पोजीशंस इफ यू हैव एन एक्सपीरियंस इन मीडिया सेल्स or related fields, we'd like to hear from you. If you're confident, a strong communicator, multilingual, and ready to take on something new, this could be your opportunity. Apply today and become a part of our growing team. Mail at careers@funasia.net.
15: Hi, this is Priyanka Chopra, and you're listening to Fun Asia Radio.

0: 104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact Desi.
1: तुमने दुबई के चक्कर में हमसे बिया किया? हमसे कतई प्यार नहीं था।

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पहला साता लैला
1: मर जानी पौंदी भंगड़ा अंग्रेजी वीड वे
2: 104.9 FM Fun Asia Radio Non-stop entertainment

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।
2: आपको दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है।

0: देसी स्वैग, देसी स्वैग, बॉलीवुड टैग, फन एशिया, फन एशिया।
1: Satisfied. We're winners. Give one reason to come alive.

0: लाइट्स माइक बॉलीवुड फन एशिया फन एशिया।
1: म्यूजिक एमजी, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों लड़के।

0: Bollywood, Tollywood, Lollywood. 24 karat pure on 104.9 FM.
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता
2: हूँ. अच्छा सुना सुना.
1: हाँ वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी.
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट, डैलस में रेडियो का डैड, फनीशा 104.9 FM.
1: Yeah, it's coming up.

0: तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi. Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
3: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
4: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
3: Miss clicks?
5: 100 logon ne click bhi kiya.
3: Customers kitne aaye?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
7: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
8: Bindas bolo. बोलो बोलो बोलो बिंदास बोलो।
9: जब गाना बोले बिंदास तो शाम भी होगी बिंदास। जॉइन बंदा बिंदास मार बिंदास मंडे से थर्सडे फ्रॉम 5 PM टू 7 PM फॉर म्यूजिक मस्ती और फुल ऑन एंटरटेनमेंट पावर्ड बाय टेक्सस स्टार रिहैब एंड परफॉर्मेंस सेंटर और हिमालयन बाजार सिर्फ वनीशा रेडियो पर।
10: हाय दिस इज विनय पाठक एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन फन एशिया रेडियो।

playing the best tunes in all of Dallas. Fun Asia Radio, 104.9 FM.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
8: Are you sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
9: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko थोड़ी हेल्प करती हैं, तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
11: हुजूर, आपको चुनना होगा हम या ये बिरयानी.
12: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह.
11: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
12: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद.
13: प्रेजेंटिंग बिरिस्ता हाउस बाय प्रिज्म बार एंड ग्रिल, ऑथेंटिक हैदराबादी फ्लेवर्स एंड अ ट्रूली नवाबी एक्सपीरियंस. नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, डिलीशियस डेजर्ट्स एंड मेनी मोर टू एक्सप्लोर. डेंटन्स फेमस बिरिस्ता हाउस इज नाउ इन फ्रिस्को, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
14: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
13: Barista House, richness of biryani bliss.
15: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
16: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
15: नहीं.
16: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
15: नहीं.
16: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
15: वो भी नहीं.
16: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
17: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG FinTax, your growth, our strategy.
18: AG FinTax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
19: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
20: Yo, wing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai.
21: Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
22: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
23: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
22: Kya matlab?
23: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
22: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
23: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
22: Ab to karna hi padega, madam.
24: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
25: Breakfast mein kya khana hai?
26: Keema paratha.
25: Mummy, omelette.
0: ब्रेड पराठा।
1: बेटी हलवा पूरी और तरकारी।
0: अब संडे को तीन अलग नाश्ता कौन बनाएगा?
21: सिग्नेचर क्विजीन बनाएगा। चूज एनी डिलिशियस ब्रेकफास्ट ऑप्शन, कीमा विद पराठा, हलवा पूरी विद तरकारी और ऑमलेट विद पराठा, सर्व्ड विद अ कप ऑफ हॉट कड़क चाय फॉर ओनली $8.99। अवेलेबल ड्यूरिंग वीकेंड ब्रेकफास्ट आवर्स एट सिग्नेचर क्विजीन इन प्लेनो। वीकेंड का मूड गर्मा गर्म देसी फूड। विजिट signaturecuisine.net।
2: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppal. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Family को चाहिए North Indian, friends को South Indian, अब जाए तो जाए कहाँ?
2: Simple, Basera Grand, one destination, double the flavor.
4: मतलब crispy golden dosa?
2: Yes, rich North Indian favorites, flavorful loaded biryanis, और एक delicious buffet जहाँ choices ही choices हैं.
4: Wow, great food, full variety and everyone's happy.
3: Family dinner हो या friends के साथ celebration, make every meal grand at Basera Grand. Basera Grand, come hungry, leave happy, together.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान। एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 or visit astrologereeshwar.com.
5: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
6: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
5: When is it?
6: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
5: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business.
7: Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
8: Floors clean.
9: Check.
8: Windows clean.
9: Check.
8: Kitchen clean.
9: Check.
8: Air ducts clean.
9: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
10: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
11: ये तारा वो तारा हर तारा।
12: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushboo, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any 2 entrees and get 1 appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
14: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
15: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
14: Miss Clicks?
16: 100 लोगों ने click भी किया.
14: Customers कितने आए?
17: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
18: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI. Turn attention into customers.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।
2: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी।
1: रिकॉर्डिंग्स लाइन अप है, शोज ऑर्गेनाइज किए हुए हैं, कौन करेगा ये सब?
2: हाँ
1: पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों।
2: जी सर, पता लगा रहा हूँ।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है। नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है। तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा। नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी जर रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर।

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? My Time Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit mytimeequity.com or call 972-330-2771.
1: My Time Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
3: I'm James Tallarico and I approve this message.
2: Paid for by Tallarico for Texas.
4: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है
5: हे भगवान मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है
6: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के
4: प्रभु डिस्काउंट भी मिलेगा
6: ऑफ कोर्स फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ तथास्तु
7: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को इंडियन अटायर फ्रिस्को योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन
8: अजी सुनते हो
9: अजी नहीं एजी सुनते हैं
10: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग एजी फिनटेक्स सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेजिया रेडियो
11: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
12: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
11: पर यहाँ सारी अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
12: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
11: सच में सब संभाल लेंगे
12: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
7: कॉल हरि बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
15: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
17: रेस्टोरेंट चूज करना हो गूगल रिव्यूज होटल बुक करना हो गूगल रिव्यूज लेकिन बच्चों के डॉक्टर की जब बात आए तो एक ही रिव्यू सबसे इम्पोर्टेंट होता है माँ का रिव्यू
7: इसलिए डॉक्टर फरहाद हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ DFW चाइल्ड मॉम अप्रूव्ड पीडियाट्रिशियन फॉर 4 कंसेक्यूटिव इयर्स 2023 थ्रू 2026 मीट डॉक्टर निशात फरहाद एट पैशन हेल्थ पीडियाट्रिक्स सर्विंग फैमिलीज एट फ्रिस्को एंड ऑब्री स्टार्टिंग एट द एंड ऑफ ऑगस्ट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर बिकॉज एवरी हेल्दी स्माइल बिगिंस विद ट्रस्टेड केयर कॉल 214-666-6259 एंड शेड्यूल योर अपॉइंटमेंट्स टुडे
18: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
19: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
18: Miss clicks.
20: 100 लोगों ने click भी किया.
18: Customers कितने आए?
21: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
22: Marketing में clicks नहीं, customers matter करते हैं. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. SmartReach AI. Turn attention into customers. SmartReach AI, a Phanasia Network product.
23: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Phanasia Radio.

थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फन एशिया रेडियो। एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल, धमाल, फन, मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

देवी के चरण आपके द्वार आए, खुशियों की बारिश में सब नहाए, दिक्कतें अब आपसे आंखें चुराएं, आपको नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। वेलकम, नमस्कार, खुशामदीद। फनीशिया रेडियो 104.9 एफएम पर मैं मधुलिका आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत। वेल, मुझे मिला है एक घंटा बोनस। वैसे तो मैं आपका साथ देती हूँ सैटरडे एंड संडे सुबह 10 से लेकर दोपहर के 12 बजे तक, बट आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी वन एडिशनल आवर विद यू गाइज एंड आई सेड एब्सोल्युटली येस। सो विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी नवरात्रि एंड येस, आई विल बी विद यू टिल नून। स्टूडियो का नंबर रखें याद, 9722355555। और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि। सो नवरात्रि से रिलेटेड अगर कोई भी गाने, कोई भी ऐसे किस्से, कहानी, कोई यादें आप करना चाहें शेयर, देन द स्टूडियो नंबर वंस अगेन इज 9722355555। वो कहते हैं ना कि नवरात्रि इज द बिगनिंग ऑफ ऑल द ऑस्पिशियस थिंग्स। सब अच्छी अच्छी चीजों का शुभारंभ होता है नवरात्रि।

right, that was Shubharambh, taken from the movie Kai Poche. And yes, नवरात्रि की बात कर रहे हैं तो नवरात्रि से रिलेटेड ना बहुत से लेजेंड्स हैं, बहुत से किस्से कहानियां हैं. सो एक लेजेंड श्री राम से भी जुड़ा हुआ है. तो कहते हैं कि जब भगवान श्री राम ने दुर्गा माँ के 9 स्वरूपों को, ऑल द 9 फॉर्म्स ऑफ दुर्गा की 9 दिन तक पूजा करी, एंड उसके रिजल्ट से, एज अ रिजल्ट, ही वॉज ग्रांटेड द स्ट्रेंथ टू किल द ईवल रावण एंड फ्री सीता. और इसीलिए नवमी के बाद आता है दशहरा, दशहरा पर जब रावण का दहन होता है. सो यही एक कहानी जुड़ी हुई है, आई मीन यही एक नहीं, यह भी एक कहानी जुड़ी हुई है विद नवरात्रि की. 9 दिन तक श्री राम ने माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा करी, एंड उसकी वजह से उनको ये वरदान मिला, उन्हें ये शक्ति मिली कि वो इवेंचुअली रावण का दहन कर पाए और माता सीता को मुक्त करा पाए.

Well, that was a taken from the movie स्वदेश। पल पल है भारी एंड पल पल सच में भारी हो जाता है जब आपका ड्रीम होम सामने हो और आप समझ नहीं पा रहे हो कि आप उस तक पहुंचेंगे कैसे। तो भाइयों और बहनों, मैं बता दूं दैट योर ड्रीम होम मे बी क्लोजर देन यू थिंक, क्योंकि 1998 से ड्रीम होम मोर्गेज ने बहुत सी फैमिलीज़ को हेल्प किया है नेशन वाइड विद पर्सनलाइज्ड मोर्गेज सॉल्यूशंस, फिर चाहे वो बाइंग के लिए हो या रीफाइनेंसिंग के लिए हो। आप ड्रीम होम मोर्गेज को कॉल करें, द नंबर इज़ 9722455626, और यू कैन विजिट ड्रीम होम मोर्गेज डॉट कॉम, एज ड्रीम होम मोर्गेज इज़ मेकिंग ड्रीम होम्स हैपन। तो द नंबर वंस अगेन फॉर ड्रीम होम मोर्गेज इज 9722455626।

वेल दैट वाज, मैं तो भूल चली बाबुल का देश, पिया का घर प्यारा लगे। एक चीज और जो लेडीज को लगती है प्यारी, वो है ज्वेलरी। तो आपको मैं श्री कृष्णा ज्वेलर्स के बारे में बताना चाहूंगी, जहां आप जाकर एक्सप्लोर कर सकते हैं उनका जो स्टनिंग कलेक्शन है, बी इट हैंड क्राफ्टेड कलेक्शन ऑफ गोल्ड, डायमंड्स, पोलकी एंड सो मच मोर। यू नो, इनके पास तरह तरह की डिजाइन हैं फॉर एवरी ओकेजन एंड एवरी स्टाइल। सो दे आर लोकेटेड एट 13145 मेन स्ट्रीट, स्वीट 220, फ्रिस्को। तो आप श्री कृष्णा ज्वेलर्स जाएं एंड एक्सप्लोर करें उनकी जो बहुत ही खूबसूरत कलेक्शन है। अच्छा, मायके ससुराल से एक और कहानी याद आई नवरात्रि से रिलेटेड, और वो है कि एक लेजेंड ये भी है दैट दुर्गा माँ को परमिशन दी गई थी बाय लॉर्ड शिवा टू गो विजिट हर मदर फॉर 9 days इन द ईयर। तो नवरात्रि इज ऑल्सो सेट टू कमेमोरेट दिस एनुअल विजिट एवरी ईयर ऑफ माँ दुर्गा टू हर मॉम्स प्लेस। यू नो, वो ससुराल से फिर मायके गई थी 9 दिन के लिए, एज शिव जी गेव हर परमिशन कि जाओ 9 दिन साल में अपनी माँ के घर रह आओ।

कल राधा को तो शाम याद आ गया, मुझे भी याद आ गया कि नवरात्रि स्पेशल है। तो आपको बताती चलूं जो डिफरेंट लेजेंड्स हैं एसोसिएटेड विद नवरात्रि। सबसे पहले तो बता दूं कि मैं कौन हूं। मैं हूं मधुलिका, लेकर आई हूं जस्ट चिल, जहां कर रहे हैं हम एज नेम सजेस्ट जस्ट चिल। आज है नवरात्रि स्पेशल। तो पहले दो लेजेंड्स मैं आपको बता चुकी हूँ। एक लेजेंड ये भी है दैट नवरात्रि सेलिब्रेट्स द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर इविल। कहते हैं कि एक राक्षस था महिषासुर, एंड उसका दिल आ गया था भाई माँ दुर्गा पर, एंड ही वॉन्टेड टू मैरी माँ दुर्गा। तो माँ दुर्गा ने कहा कि अगर तुम बैटल में मुझे हरा दोगे तो डेफिनेटली आई विल मैरी यू। सो दिस लेजेंड सेज दैट माँ दुर्गा डिफीटेड द बफलो डेमन महिषासुर, एंड सिंबलाइजिंग द ट्रायम्फ ऑफ डिवाइन पावर ओवर ईविल। तो काफ़ी ज़बरदस्त लड़ाई हुई थी, एंड ऑफ कोर्स माँ दुर्गा ने महिषासुर को हरा डाला।

ऑल राइट, दैट वॉज रंगीलो म्हारो ढोलना. जी हाँ, आज हम जस्ट चिल में सेलिब्रेट कर रहे हैं नवरात्रि, एंड योर सॉन्ग रिक्वेस्ट आर वेरी वेरी वेलकम. सो अगर कोई नवरात्रि से रिलेटेड बातें, कोई यादें, कोई गाने आ रहे हैं याद और करना चाहें हमारे साथ शेयर, तो स्टूडियो का नंबर रखें याद, 972-235-5555. मैं मधुलिका दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. राइट, एंड द नेक्स्ट वन, वेल दिस इज अ सॉन्ग रिक्वेस्ट एंड इट्स वन ऑफ माई फेवरेट नंबर टू. सो लेट्स गो अहेड एंड एन्जॉय दिस नेक्स्ट सॉन्ग.

0: the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो, ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: ये तारा वो तारा हर तारा।
4: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
6: That garba was totally worth it. We had so much fun.
7: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
6: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
8: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन।
10: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे।
11: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर। आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर। आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर। प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
10: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
4: व्हाट इफ योर नेक्स्ट होम केम फुली लोडेड विद ओवर $35,000 इन प्रीमियम अप्लायंसेस, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड डिजाइनर फर्निशिंग्स इंक्लूडेड? दिस नियरली न्यू होम इन कैम्ब्रिज क्रॉसिंग, सेलिना फर्स्ट ऑक्युपाइड इन जनवरी, इज अवेलेबल एज द सेलर रिलोकेट्स। Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors, and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyers agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
12: Every home has a story. Let's create yours together.
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India. The Groh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Groh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
18: Hi, I'm Rajkumar Rao, and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Fun Asia, 104.9 FM।

your family a very happy Navratri. May Ma Durga bless you with strength, happiness, prosperity, good health and success. May these 9 auspicious nights fill your life with positivity and divine blessings. Wishing you all a very, very happy Navratri. Welcome, Namaskar, Khushamadi, The Fun Asia Radio 104.9 FM पर मैं मधुलेखा आप सभी का जस्ट चिल में करती हूँ हार्दिक स्वागत. वेल, जस्ट चिल में हम कर रहे हैं और करेंगे एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. मैं दूंगी आपका साथ दोपहर के 12 बजे तक. स्टूडियो का नंबर रखें याद 972-235-5555. We are celebrating Navratri today. जी हाँ, it's a Navratri special today. So if you have any Navratri related songs or you know some requests, some dedications, any fun or beautiful memories that you want to share with us, studio का number रखें याद 972-235-5555.

0: वेल दैट वाज मैंने पायल है छनकाई बाय फाल्गुनी पाठक. मतलब गरबा डांडिया की बात हो और फाल्गुनी पाठक की बात ना हो, कैसे हो सकता है, राइट? व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल नंबर दिस इज फ्रॉम फाल्गुनी पाठक. अच्छा, बिफोर आई प्ले द नेक्स्ट सॉन्ग, आई डू वांट टू टेल यू ऑल अबाउट माई टाइम इक्विटी. यू नो इट्स लेड बाय CPA सुधीर पाई. माई टाइम इक्विटी जो है ऑफर्स पर्सनलाइज स्ट्रैटेजीज फॉर योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल एस्टेट, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग एज वेल. सो यू नीड टू विजिट mytimeequity.com या फिर आप कॉल करके CPA सुधीर पाए से बात भी कर सकते हैं. एंड हिज नंबर इज 4697021272. द नंबर वंस अगेन इज 4697021272.
1: बाय.
2: बाय.

That was taken from the movie Dhadak and that was a Zingat. And yes, Navratri special कर रहे हैं तो Navratri means nine nights. You know, ये Sanskrit word nav, nine, and Ratri is night, combined to give the festival its name. The celebration honors the divine feminine in many forms. पता है, there are nine forms of माँ दुर्गा जिनकी पूजा की जाती है. Each day is traditionally dedicated to one of the nine forms of the goddess, collectively known as Nav Durga. राइट एंड इस दिन कन्या पूजा यू नो जब अष्टमी और नवमी पे जो कन्या पूजा की जाती है एंड दैट्स रियली स्वीट. आई रिमेम्बर कि मुझे वो जो यू नो हलवा पूड़ी चने मिलते थे वो तो मैं घर ले जाती थी पर जो पैसे मिलते थे उसकी मैं शाम को जाके ऑरेंज बार और अंकल चिप्स और ये सब ज़रूर फन फ्लिप्स ये सब आते थे तब एंड आई वुड लुक फॉरवर्ड टू कि ये तो मेरे पैसे हैं मैं जब चाहूँ जाकर अपने मनपसंद आइसक्रीम खा सकती हूँ. So yes, you know, there is this tradition that young girls are worshipped as manifestations of the divine feminine and offered food, gifts or blessings often towards the end of Navratri. And this Kanya Puja is very beautiful from the heart and it's a very beautiful ceremony to celebrate girls, to celebrate the Kanyas.

जस्ट लाइक दिस सॉन्ग, मैं भी यही बोलती हूँ कि अपनी फिकर को छोड़ दें, फिकर नॉट, विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर फॉर यू. जी हाँ, अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं है या पैशन हेल्थ आउट ऑफ नेटवर्क है, फिर भी आप अफोर्डेबल प्राइमरी केयर पा सकते हैं विद पैशन हेल्थ डायरेक्ट फॉर जस्ट $85 अ मंथ, एंड इट विल इंक्लूड प्राइमरी केयर, प्रिवेंटिव केयर, मेडिकेशन मैनेजमेंट, टेली हेल्थ एंड मच मोर. आप उन्हें कॉल करें, द नंबर इज 214-666-6259, और यू कैन विजिट passionhealthphysicians.com. एंड याद रखिए, दिस प्रोग्राम इज नॉट हेल्थ इंश्योरेंस, यू नो, सो एलिजिबिलिटी रिस्ट्रिक्शंस डू अप्लाई.

यस, गर्ल्स डू लाइक टू स्विंग, राइट। एंड अब मैं आपको बताऊंगी नवरात्रि से रिलेटेड कुछ और कहानी एंड किस्से, राइट। सो द स्टोरी ऑफ द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईवल। अकॉर्डिंग टू अ वेल नोन हिंदू लेजेंड, कहा जाता है कि महिषासुर जो था असुर, वॉज अ पावरफुल डीमन हु कुड चेंज हिज फॉर्म एंड ही रिसीव्ड अ बून दैट मेड हिम बिलीव दैट ही कुड नॉट बी डिफीटेड। तो उस चक्कर में ही स्टार्टेड थ्रेटनिंग द गॉड्स एंड द यूनिवर्स। तो सभी भगवानों ने मिलकर दे कंबाइंड द डिवाइन एनर्जीज टू क्रिएट गॉडेस दुर्गा हु फॉट विथ महिषासुर। एंड बेसिकली शी केम इन दिस ब्यूटिफुल अवतार। सो महिषासुर जो था ही फेल इन लव एंड ही वॉज लाइक आई नीड टू मैरी यू। एंड शी सेड, गॉडेस दुर्गा सेड कि अगर तुमने मुझे बैटल में हरा दिया तो डेफिनेटली यू नो आई विल मैरी यू। एंड द बैटल कंटिन्यूड लास्टेड फॉर 9 days एंड नाइट्स एंड ऑन द 10th डे शी डिफीटेड हिम। ये जो विक्ट्री ऑफ राइटियसनेस ओवर एरोगेंस एंड ईविल, यू नो, एंड द पावर ऑफ फेमिनिन डिविनिटी, यही दिस इज वॉट इट सिम्बलाइजेज एंड इट इज सेंट्रल टू दुर्गा पूजा इन वेस्ट बंगाल। यू नो, इतने ज़बरदस्त पंडाल सजते हैं दुर्गा पूजा के लिए एंड इट इज़ वाइडली एसोसिएटेड विद नवरात्रि सेलिब्रेशंस थ्रू आउट इंडिया। तो अगर आप नवरात्रि के टाइम में इंडिया में हैं, सो वन प्लेस दैट यू कैन डेफिनेटली गो एंड यू नो फील एंड एक्सपीरियंस दुर्गा पूजा इज़ वेस्ट बंगाल। कलकत्ता जाएं और मतलब कोलकाता रैदर नॉट कलकत्ता, कोलकाता जाएं और ये दुर्गा पूजा के जो पंडाल हैं इतने खूबसूरत होते हैं एंड डेफिनेटली इट्स समथिंग टू विटनेस फॉर योरसेल्फ।

0: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
1: I'm James Tallarico, and I approve this message.
0: Paid for by Tallarico for Texas.
2: ये लास्ट दिवाली पहना था ये नेहा की शादी में इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है हे भगवान मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है
3: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बाली के
2: प्रभु डिस्काउंट भी मिलेगा
3: ऑफ कोर्स फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ तथास्तु
4: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड फ्रिस्को इंडियन अटायर फ्रिस्को योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन
5: बेटा 95% आए
6: हाँ मम्मी
5: गुड अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए
7: मेरा
5: हाँ प्रॉफिट मार्जिन कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस गोल्स सारे अकाउंट्स अपडेटेड
7: वो
4: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी कैश फ्लो टैक्स प्लानिंग बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज विजिट agfintechs.com कॉल 972-618-8555 एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी सर्विसेज आर सब्जेक्ट टू इंडिविजुअल एलिजिबिलिटी एंड एप्लीकेबल लॉस टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई
8: दैट गरबा वाज टोटली वर्थ इट वी हैड सो मच फन
9: आई लॉस्ट सो मच ऑफ कैलोरीज टुडे एंड आई एम स्टार्विंग बट इट्स सो लेट Where can we eat now?
8: Don't worry, there's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
10: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे
12: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम
13: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
7: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
7: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
14: सच में सब संभालेंगे
7: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली
4: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770 Vanessa Events, your celebration partner.
15: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
16: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
15: Miss Clicks?
17: 100 logon ne click bhi kiya.
15: Customers kitne aaye?
18: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
0: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
19: जुड़ जाओ अपनी धरती से देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM

टेकन फ्रॉम द मूवी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, दैट वॉज ढिंडोरा बाजे रे. वेल, दिस इज मधुलिका और आज हम कर रहे हैं नवरात्रि स्पेशल, राइट? सो अगर नवरात्रि से रिलेटेड कोई भी गाने आपको याद आ रहे हैं या कुछ सुनहरी यादें हैं, कुछ बातें हैं, कुछ अलग तरीके के रिचुअल्स या कुछ हट के सेलिब्रेशंस जो आप करते हैं या आपने देखी हैं, करना चाहें शेयर, तो स्टूडियो का नंबर 972-235-5555. एंड ये ढिंडोरा बाजे में आलिया भट्ट थी, तो हमारे एक लिसनर का कॉल आया एंड ही वॉज लाइक कि आलिया भट्ट का ही एक और गाना है एंड दैट्स फ्रॉम गंगूबाई काठियावाड़ी एंड ही डिड वॉन्ट टू लिसन टू दिस वन, सो हियर इट इज़, एन्जॉय.

wonderful request and keep them coming. The studio number once again is 972-235-5555. Navratri ki baat kar hi rahe hain to aapko bataun ki वैसे तो ये पता ही होगा, there are 9 forms of Maa Durga and हर दिन traditionally is dedicated to one of the 9 forms of the goddess, collectively known as Nav Durga. एंड अगर गरबा की बात करें तो गरबा का एक बहुत डीपर मीनिंग भी है. ऑफकोर्स द फन एंड द डांस, ऑफकोर्स ऑल दैट इज देयर, बट गुजरात में गरबा इज ऑफन डांस्ड अराउंड अ डेकोरेटेड पॉट और लैम्प. द लाइट इन दैट लैम्प सिंबलाइजेज लाइफ एंड द डिवाइन प्रेजेंस. और डांडिया जो है, इट यूजेज दीज कलरफुल स्टिक्स. तो ये डांडिया रास जो होता है इज अ लाइवली फोक डांस ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुजरात. द रिदमिक टैपिंग ऑफ द स्टिक्स मेक्स इट अ फेस्टिवल फेवरेट. यू नो, इतने धूम धाम से डांडिया, आफ्टर पहले शुरुआत गरबा से होती है एंड देन इवेंचुअली इट गोज डाउन टू डांडिया.

दैट वॉज राधा कैसे ना जले, टेकन फ्रॉम द मूवी लगान। एंड नवरात्रि की बात हो ही रही है तो नवरात्रि हैज़ 9 फेस्टिव कलर्स। बहुत सी कम्युनिटीज़ जो हैं एसोसिएट अ डिफरेंट कलर विद ईच डे। आई नो मेरी एक बंगाली फ्रेंड है पारोमिता, एंड शी वुड, अब तो बहुत टाइम हो गया मुझे उससे मिले हुए, लेकिन आई रिमेम्बर कि वो पूरे 9 दिन, यू नो, शी न्यू कि आज कौन से कलर का दिन है और उसी कलर के कपड़े वो पहनती थी। सो कमिंग बैक टू द कलर, सो मेनी कम्युनिटीज़ एसोसिएट अ डिफरेंट कलर विद ईच डे। द कलर सिक्वेंस वेरीज बाई ईयर एंड रीजनल ट्रेडिशन, मेकिंग ईच सेलिब्रेशन वाइब्रेंट एंड यूनिक। सो यू नो, रंग का भी बहुत फ़र्क पड़ता है, रंग को भी सेलिब्रेट किया जाता है।

ब्यूटीफुल सॉन्ग राम सिया राम. वेल दिस इज मधुलिका, लेकर आई हूँ जस्ट चिल, जहाँ कर रहे हैं हम एज द नेम सजेस्ट जस्ट चिल. वेल आज है नवरात्रि स्पेशल, तो आपको बताऊँ कि वैसे तो मैंने और इतने सारी किस्से कहानी बताए, बट नवरात्रि जो है इट ऑफन एंड्स विद अ विक्ट्री सेलिब्रेशन. जो 10वां दिन है, 9 दिन तक तो नवरात्रि मनती है, एंड देन 10वें दिन विजयदशमी या दशहरा के नाम से ये सेलिब्रेट होता है, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द विक्ट्री ऑफ गुड ओवर ईविल. यू नो, इन मेनी नॉर्थ इंडियन ट्रेडिशंस इट कमेमोरेट्स लॉर्ड राम्स विक्ट्री ओवर रावण. जी हाँ, इसीलिए दशहरा पर रावण दहन भी किया जाता है, क्योंकि दशहरा पर ही राम ने रावण पर विजय पाई थी.

टेकन फ्रॉम द मूवी स्वदेश, दैट वॉज अ पल पल है भारी. एंड पल पल सच में भारी हो जाता है. कहीं अगर आप कोई ट्रक या कार एक्सीडेंट में फंस जाए या कहीं कोई स्लिप या फॉल इंसिडेंट हो जाए तो आपको फोकस करना है अपनी हीलिंग पर. और अटर्नी ओमर ख्वाजा जो है, ही विल फाइट योर केस, ही विल डील विद द इंश्योरेंस कंपनीज एंड यू डू नॉट पे हिम अंटिल यू विन योर केस. तो आप अटर्नी ओमर ख्वाजा को कॉल करें. द नंबर इज 4693005046 और यू कैन विजिट attorneyomar.com, दैट्स attorneyomar.com फॉर मोर डिटेल्स.

राइट, दैट वाज टेकन फ्रॉम द मूवी कलंक, घर मोरे परदेसिया। अच्छा, अब आ गया है आपके लिए एक गिव अवे, एंड ये गिव अवे आ रहा है कढ़ाई पॉइंट की तरफ से। जी हाँ, यू नीड टू, आई मीन यू नो, यू नीड टू नो दिस, दैट यू कैन एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ राहत फतेह अली खान साहब लाइव, जॉइंड बाय हिज सन शहजमान अली खान ऑन दी वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। जी हाँ, ये होगा एक बहुत ही अनफॉरगेटेबल नाइट ऑफ कव्वाली, सूफी, बॉलीवुड हिट्स एंड टाइमलेस मेलोडीज। होगा ये फ्राइडे अक्टूबर 16 को शाम 8:30 बजे से एट कमोरिका सेंटर इन फ्रिस्को। एंड हियर इज योर चांस टू बी देयर। यू नो, कढ़ाई पॉइंट इज गिविंग यू दिस टिकट, एंड इस टिकट को जीतने के लिए, इस गिव अवे को जीतने के लिए आपको मुझे बताना है, क्योंकि आज हम जस्ट फिल्म में नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो आप मुझे बताएंगे कोई भी तीन नाम जिन नामों से नवरात्रि को अक्रॉस इंडिया सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, नॉर्थ में कुछ और तरीके से किसी और नाम से सेलिब्रेट किया जाता है, वेस्ट में किसी और नाम से, ईस्ट में किसी और नाम से, साउथ में किसी और नाम से। सो यू हैव टू टेल मी एनी थ्री डिफरेंट नेम्स ऑन यू नो हाउ वी सेलिब्रेट नवरात्रि। एंड स्टूडियो नंबर 972-235-5555। एंड द नेक्स्ट वन, वेल, दैट्स फाल्गुनी पाठक्स वेरी फेमस सॉन्ग। एंजॉय।

0: ऑलराइट, हमने पूछा था आपसे एक गिव अवे सवाल. सवाल ये था कि आप मुझे बताएंगे कोई भी तीन ऐसे नाम जिन नामों से नवरात्रि को सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस इंडिया, एंड आप जीत लेंगे ये राहत फतेह अली खान साहब का जो ये कॉन्सर्ट होने जा रहा है ऑन फ्राइडे, उसका एक कॉन्सर्ट का टिकट. सो वी डू हैव अ लिसनर ऑन एयर विद अस. हाय, यू आर लाइव ऑन एयर.
1: सोनाली.
0: ऑलराइट सोनाली, तो बताइए कि कौन से वो तीन नाम बताने वाले हैं.
1: हाँ, तो एक गुजरात में उसको नवरात्रि बोलते हैं.
0: बिल्कुल सही.
1: वेस्ट बंगाल कोलकाता साइड में उसको दुर्गा पूजा बोलते हैं.
0: बिल्कुल सही.
1: एंड डाउन साउथ में दे कॉल इट गोलू स्लैश नवरात्रि.
0: एब्सोल्युटली करेक्ट, बिल्कुल सही जवाब दिया सोनाली. कांग्रेचुलेशंस. आई एम गोना टेक यू ऑफ एयर एंड टेक सम डिटेल्स फ्रॉम यू व्हाइल आई एम गोना प्ले अ नाइस नंबर फॉर आवर लिसनर्स. सो थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग.
1: थैंक यू.
0: थैंक यू.

0: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
1: तारा वो तारा हर तारा। अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: That garba was totally worth it. We had so much fun.
3: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
2: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
4: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
5: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
4: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
6: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
7: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
6: आखिर आखिर क्या है इस बिरयानी में?
7: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
8: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
1: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
8: Barista House, richness of biryani bliss.
9: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
10: राहत फतेह अली खान,
11: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
9: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 पीएम, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
11: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशन के साथ।
9: टिकट्स ऑन टिकट मास्टर एंड सुलेखा.com।
12: जग घूमे थारे जैसा न कोई।
13: डालस की धड़कन 104.9 FM, फनीजिया रेडियो।

taken from the movie Hum Dil De Chuke Sanam. That was a song request coming from Bhanu. Bhanu, thank you so much for tuning in. And now there's a giveaway coming for you all, and that's from Chandigarh Bites. Jiha, here's a chance to win $10 off on a billing of $50 for dine-in. Plus, saath hi saath, you can enjoy the special thali from Monday through Friday with exciting new dishes rotating daily for lunch only. So, आपको बताऊं, चंडीगढ़ बाइट्स इज लोकेटेड ऑफ मैकडर्मट ड्राइव इन एलन, एंड यू कैन डेफिनेटली विजिट chandigarhbites.com फॉर मोर डिटेल्स. एंड नाउ इट्स टाइम फॉर अ गिव अवे. आप जीतेंगे $10 ऑफ ऑन अ बिलिंग ऑफ $50 व्हेन यू आर इन. एंड द क्वेश्चन इज कि हम नवरात्रि सेलिब्रेट कर रहे हैं आज जस्ट चिल में, तो व्हाई डोंट यू टेल मी 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स विच आर सेलिब्रेटिंग नवरात्रि. सो टेल मी एनी 3 बॉलीवुड सॉन्ग्स विच आर सेलिब्रेटिंग नवरात्रि. द स्टूडियो नंबर 972-235-5555.

था ना ये मजेदार गाना. अब अगला गाना जो है वो भी एक सॉन्ग रिक्वेस्ट है, एंड दैट्स टेकन फ्रॉम यू नो तापसी पन्नू की एक वो मूवी आई थी रश्मि रॉकेट, उस मूवी से है ये गाना. एंड थैंक यू सो मच रश्मि फॉर कॉलिंग इन एंड रिक्वेस्टिंग द सॉन्ग.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
3: Call 857-891-8942 today.
4: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
5: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
4: Miss Clicks.
6: 100 logon ne click bhi kiya.
4: Customers kitne aaye?
7: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
8: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
9: एल विंग वालो, ध्यान से सुनो, ये सिर्फ म्यूजिक नहीं, हिंट है. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
10: 5 से 8 straight from the heart. Kal Hindi Hindi Bol.
11: You know my voice on the radio. Now let me be a voice you can trust in real estate. Main hoon Navneeta Khemka, realtor with Keller Williams Realty. Buying, moving or selling a home? I bring market knowledge, creative marketing and personal commitment to your journey. Because to me, real estate isn't just about properties. It's about you, mere dosto, your possibilities and your new beginnings. Every home has a story. Let's create yours together.
12: Call Namrita Khemka at 347-449-4242.
10: Phone uthaye, number dabaye.
11: 347-449-4242.
13: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
14: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
13: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज.
14: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: इंडिया में घर खरीदना हुआ आसान, गृह प्रवेश इंडिया प्रॉपर्टी एक्सपो आ रहा है फ्रिस्को में. अक्टूबर 10th एंड 11th, हाथ रीजेंसी फ्रिस्को, 10 AM टू 8 PM. मुंबई, बैंगलोर, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद एंड दिल्ली NCR के टॉप डेवलपर्स से मिलने का एक ही मौका. चूज योर होम फ्रॉम 200+ प्रोजेक्ट्स, फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, एन इवेंट बाय माई स्क्वायर फीट.

दिस इज KZMP 104.9 FM फनी शरीर पे आप है मेरे यानी कि नीलम के साथ, और एक बार फिर से आप सबकी खिदमत में नीलम का प्यार भरा नमस्कार आदाब एंड अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। जी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जहां पर एक से दो के बीच में इस म्यूजिकल जर्नी में हम आपकी शुरुआत करते हैं एक या दो फिल्मी गानों से, लेकिन हमारी बातें ज्यादातर होती है गैर फिल्मी गानों की, गैर फिल्मी कलाकारों की, कुछ गज़ल, कुछ रॉक बैंड, कुछ फ्यूजन गाने, और उसी के साथ कुछ बहुत ही खूबसूरत वेब सीरीज़ के गाने भी होते हैं पाकिस्तानी ड्रामास के साथ, एंड OTT प्लेटफॉर्म की बहुत सारी बातें होती है भाई कि कौन से सीरीज़ आप आजकल देख रहे हैं, कौन सी देखनी चाहिए, कौन सी मुझे देखनी चाहिए, कौन से रिकमेंडेशन आप मुझे देंगे, वगैरह वगैरह, ये सारी बातें होती है 2 बजे तक। तो बने रहिए हमारे साथ, जुड़े रहिए, और कुछ बहुत ही खूबसूरत संगीत के साथ हमारा रहेगा ये 2 बजे तक ऑन 104.9 FM फनीशा रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। हिमेश रेशमिया के संगीत में सजा हुआ ये गीत ये प्रेम मोल लिया, सुन लीजिए, उसके बाद कुछ ये प्रेम मोल लिया की बातें।

प्रिया जी, मैंने प्रेम मोल लिया जी हाँ, और ये जो है हिमेश रेशमिया के संगीत में सजा हुआ था ये गीत, एंड बड़जात्या परिवार की प्रस्तुति होगी। इस साल दिवाली में ही वो रिलीज़ होने वाली है, कुछ दिनों में ही, आई थिंक कुछ हफ्तों में, चलिए नॉट इन दिनों में। और जब भी सूरज बड़जात्या की फिल्म का इंतज़ार हमें रहता है, हमें पता होता है कि बहुत ही क्लीन फिल्म होगी, फैमिली एंटरटेनर होगी, फैमिली के लिए, परिवार के वैल्यूज़ की कुछ ऐसी ही बात होगी। और इस बार उसमें लेकिन आयुष्मान खुराना है जी हाँ, उनकी जो प्रेम है सलमान खान नहीं है, इट इज़ आयुष्मान खुराना, और प्रेम मोल लिया नाम ऐसा ही है लेकिन प्रेम साहब एब्सेंट है तो किसी और प्रेम साहब को ले लिया। मैं हूँ नीलम, आपके साथ रहती हूँ हर वीकेंड में जी हाँ, सैटरडे एंड संडे। और जब घर और परिवार की बात निकली है तो चलिए आपको ड्रीम होम मॉर्गेज की याद दिला दूँ। ड्रीम होम मॉर्गेज आपके घर के सपनों को सही करने के लिए, क्योंकि घर में कभी कभी ये होता है कि हमने घर तो ले लिया लेकिन रिफाइनेंसिंग की बात हो, मॉर्गेज की बात हो, बहुत सारे मसले होते हैं। तो देखिए ना मैम, दैट इज़ ड्रीम होम मॉर्गेज। आप आज ही कॉल कर सकते हैं 972-245-5626 हुसैन भाई को। वंस अगेन दैट इज 972-245-5626। ड्रीम होम मॉर्गेज .com इज द वेबसाइट, बहुत सालों से आप ही की सेवा में, दैट इज ड्रीम होम मॉर्गेज। इस कार्यक्रम में हमारी प्रस्तुति होती है गैर फिल्मी गानों की ज़्यादातर, तो चलिए अब एक बहुत ही खूबसूरत आपको लाइव बैंड की तरफ ले जाती हूँ। और कुछ ऐसे गाने होते हैं हमारे लेजेंडरी कंपोजर्स के और सिंगर्स को जिनको श्रद्धांजलि दी जाती है ऐसे ही खूबसूरत प्रस्तुति के साथ, यहाँ पे ऑन 104.9।

बहुत ही खूबसूरत है पिया, तो से नैना लागे रे, अजीर उठ कर हमसे कहाँ जाएगा। ये जो बैंड है उसका नाम संपूर्ण बैंड था, एंड इस बैंड में ज़्यादातर जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स या सिंगर्स, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन जितने भी इंस्ट्रूमेंट प्लेयर्स या सिंगर्स है, वो प्रज्ञाचक्षु है। प्रज्ञाचक्षु यानी कि ब्लाइंड है, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से संगीत को उन्होंने अपनाया और संगीत ने उनको अपनाया है। बस वही संगीत की बातें, साज और आवाज की बातें मेरे यानी कि नीलम के साथ एवरी सैटरडे एंड संडे।

0: लीजिए,
1: एक बार देख लीजिए, दीवाना बना दीजिए। चलने को है तैयार हम, परवाना बना दीजिए।
2: कल्पना गंधर्व की आवाज और संजय लीला भंसाली का संगीत, हीरा मंडी वेब सीरीज से ली गई थी ये बातें। संजय लीला भंसाली ने संगीत तो वो देते ही है, बहुत ही बेमिसाल संगीत वो देते हैं। जितने अच्छे प्रोड्यूसर है, जितने अच्छे डायरेक्टर है, इन माय ओपिनियन आई थिंक ही इज इक्वली गुड इन म्यूजिक कंपोजिशन। तो वो है भाई संजय लीला भंसाली जी। एंड उनकी एक और खूबी ये है कि उन्होंने सीरीज में, ये वेब सीरीज में जहाँ अलग अलग कलाकारों को मौका दिया था, आई थिंक वेन एवर ही कंपोजेज एनी म्यूजिक ही डज ट्राई कि जहाँ नई आवाज़ें हम सुन पाए, नई टैलेंट हम सुन पाए। तो वो है संजय लीला भंसाली। और बहुत ऐसे कम प्रोड्यूसर और डायरेक्टर और म्यूजिक कंपोजर्स होते हैं जो एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए तैयार होते हैं, बिकॉज वेन दे आर मेकिंग दिस इन मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ रुपीज एनी सीरीज, आजकल सीरीज वेब सीरीज भी कम दामों में नहीं बनती, राइट? एंड देन टू गिव अ चांस टू न्यू कंपोजर्स, वो खुद तो है ही कंपोजर, लेकिन न्यू सिंगर्स को मौका देना एंड टू हैव दैट कॉन्फिडेंस इन दैम। सिमिलरली ही डिड दैट विथ श्रेया घोषाल। श्रेया घोषाल जब नई थी, शी वॉज ओनली 16 ईयर्स ओल्ड जब उन्हें देवदास के गाने दिए थे। नाउ देवदास वॉज सच अ ह्यूज मेगा प्रोजेक्ट। नाउ एक बार किसी लड़की को टीवी पे देखना, उसको सुनना और उसकी आवाज़ इतनी पसंद आना कि उसको 3 या 4 गाने अपनी फिल्म के दे देना, दैट ओनली संजय लीला भंसाली कैन डू।

0: बंदिश पंडित से सुना आपने, ये बहुत ही खूबसूरत जुगल बंदी बंदिश आपने सुनी फरीद हसन और उनके साथ मोहम्मद अमन। अब जब ये सीरीज बनाई गई थी, ऑफ कोर्स एज यू नो बंदिश जो शास्त्रीय संगीत का एक प्रकार होता है, तो बंदिश पंडित एज यू नो कि इट इज़ ऑल अबाउट क्लासिकल म्यूजिक एंड वगैरह वगैरह, और इतनी खूबसूरती से इसके जो कलाकार थे, नाउ टू सिंग दिस जुगल बंदी, हाँ ये अलग बात है कि भाई प्लेबैक सिंगिंग कोई और दे देगा, दैट्स ऑफ कोर्स दे कैन नॉट सिंग दिस आर्टिस्ट राइट, और इस तरह से इतनी डीप क्लासिकल जो उनकी धुन होती है, लेकिन टू पर्दे पर दिखाना ये कि दे आर सिंगिंग दिस जुगल बंदी, दैट रिक्वायर्स सो मच ऑफ हार्ड वर्क एंड प्रैक्टिस। आप सोचिए ज़रा कि व्हेन यू आर सिंगिंग अ सिंगल यू नो कोई भी ऐसा बॉलीवुड प्लेबैक का कोई गाना आप गा रहे हैं, तो उसके लिए जस्ट लिप सिंग करना इट्स नॉट दैट हार्ड कि हाँ भाई प्यार का गीत है, वी विल जस्ट लिप सिंग एंड कुछ एक्सप्रेशन मुँह पे दिखा देंगे ये वो एंड हो गया। बट व्हेन यू आर सिंगिंग अ क्लासिकल सॉन्ग ऑन द स्क्रीन एंड यू हैव टू शो दैट हरकतें, जो भी आप हरकत ले रहे हैं, जो भी आपकी जो भी धुन है, जो भी आपके सारे गमों पर वगैरह वगैरह, टू शो दैट ऑन द फेस वो एक्सप्रेशन के साथ गाने की हरकत के साथ, दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ वर्क, हार्ड वर्क एंड ऑफकोर्स एक्टिंग तो है ही है इसमें, लेकिन एक्टिंग के अलावा समझने की भी बात होती है कि किस तरह से आप इस गाने को लिप सिंक करेंगे ताकि लोगों को लगे कि आप ही ये बंदिश गा रहे हैं, आप ही इतने क्लासिकली ट्रेंड सिंगर है कि यू आर सिंगिंग ऑन द स्क्रीन। मैं हूं नीलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, बहुत सारे ढेर सारे कॉल्स के लिए। तो चलिए कमर्शियल ब्रेक पर हम जाएंगे, लेकिन कमर्शियल ब्रेक के बाद कुछ सीरीज की बात होगी, वेब सीरीज की बातें होगी, पाकिस्तानी ड्रामास के भी गाने होंगे, कुछ आपकी राय लूंगी भाई कौन से गाने कौन से सीरीज आप आजकल देख रहे पसंद कर रहे, तो हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये शो है गैर फिल्मी गानों का, जहाँ पर आप मुझे कुछ गाने दे सकते हैं, कहीं पे भी आपने कोई बैंड सुना हो, कोई प्राइवेट एल्बम हो, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें हो, तो बिल्कुल दिस इज अ सेगमेंट फॉर यू एवरी संडे। तारा कमर्शियल एनर्जी को शुक्रिया अदा करते चले, जी हाँ 8444282808, और यू कैन विजिट taraenergy.com, ट्रस्ट तारा फॉर देयर ब्यूटिफुल प्लान्स, जी हाँ कम्पिटिटिव रेट्स भी है, रिलायबल सर्विसेज है, एंड दे आर सर्विंग टेक्सस बिजनेसेस सिंस 2002, वंस अगेन सिंस 2002, एंड दैट इज तारा कमर्शियल एनर्जी 8444282808, वंस अगेन दैट इज 8444282808, और यू कैन विजिट taraenergy.com। सोशल मीडिया का ज़माना है भाई जी, बिल्कुल इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो वगैरह वगैरह, और इस सोशल मीडिया में आपके बिजनेस को बढ़ाने के लिए भी बहुत सारे तरीके होते हैं। वेल इफ़ यू आर नॉट श्योर कि कैसे आप आपके सोशल मीडिया में आपके बिजनेस को बढ़ा सकते हैं, तो वेल फनेशा नेटवर्क कैन हेल्प यू विद दैट। 4699-424-3188 इज़ द नंबर वेर यू कैन बुक योर कॉन्टैक्ट ऑडिट टूडे, कंटेंट ऑडिट टूडे, दैट इज 4699-424-3188, एंड दैट इज़ रियल एटिव मीडिया पावर्ड बाय फनेशिया नेटवर्क। और हमारा कार्यक्रम पावर्ड बाय फनेशिया नेटवर्क तो होता ही है, लेकिन पावर्ड बाय ऑल ऑफ यू एज वेल, आपके कॉल्स के साथ, आपके संगीत के प्यार के साथ, मैं नीलम ये कार्यक्रम प्रस्तुत करती हूँ, जहाँ पे मैंने एज द नेम सजेस्ट मैंने कहा था कि सुर और संगीत के लम्हे होते हैं, लेकिन ड्यूरिंग दिस आवर, ड्यूरिंग दिस सेगमेंट, वी ट्राई टू प्रेजेंट मोर ऑफ नॉन फिल्मी सॉन्ग्स, कुछ नए एल्बम्स की बातें, कुछ नए आर्टिस्ट की बातें, कुछ पुराने एल्बम्स हो या नए आर्टिस्ट हो, लेकिन गाते हो होती है सारी गैर फिल्मी ऑन 104.9 FM फनेशिया।
1: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
2: I'm James Tallarico, and I approve this message.
1: Paid for by Tallarico for Texas.
3: It's the time to clock out. It's the time to catch up.
4: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन। एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री। ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
5: ऑर्डर ऑर्डर मिस्टर इंप्रेशंस, कैंपेन का रिजल्ट।
6: योर ऑनर, हजारों लोगों ने ऐड देखा।
5: मिस क्लिक्स,
7: 100 लोगों ने क्लिक भी किया।
8: कस्टमर्स कितने आए?
6: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
7: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Phanasia Network product.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
11: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
10: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
11: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
12: अजी सुनते हो?
13: अजी नहीं, एजी सुनते हैं।
14: द ओजी ऑफ टैक्स प्लानिंग, एजी फिनटैक्स। सुनेंगे आपके फाइनेंशियल कंसर्न्स, देंगे स्मार्ट सॉल्यूशंस। एवरी फ्राइडे 9:45 AM ओनली ऑन फनेशिया रेडियो। तुझे देख
15: देख हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
16: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. Rahat Fateh Ali Khan aur unke bete Shahzaman Ali Khan ek hi stage par.
15: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmeen Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 PM, Comerica Center, Frisco.
16: Grand sponsor Karahi Point Plano ke exclusive concessions ke saath.
15: Tickets on Ticketmaster and Solekha.com.

स्वागत है आप सभी का बहुत ही प्यारे से गाने के साथ। और आप ही की पसंद पर आपने पाकिस्तानी ड्रामा पहली बारिश से सुना ये गीत ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। जी बिल्कुल, और आपका और हमारा जो साथ होता है ये म्यूजिकल साथ कम होता है संडेज, आई डू अग्री। बहुत सारे मुझे कॉल्स आते हैं बताने के लिए कि भाई एक घंटे में क्या होता है, 10 घंटे भी। देखिए संगीत की बात ऐसी है कि इवन इफ आई सिट हियर फॉर 10 आवर्स, समटाइम्स यू विल नॉट फील कंटेंट, राइट। हमें लगता है कि नहीं बस गाने सुनते ही रहिए, लेकिन हाँ बिल्कुल हमारी मुलाकात कम हो, छोटी सी हो, लेकिन ऐसी हो कि बहुत ही इम्पैक्टफुल हो, ताकि आप पूरे हफ्ते ये गाने याद करते रहे, हमें याद करते रहे। और जब इम्पैक्ट की बात है तो पी एम जी ज्वेल्स को याद कर ले, क्योंकि उनके पास अगर आप जाते हैं तो आपको 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एंड एक्सेलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्टमैनशिप मिलेगी। और डायमंड की बात हो, गोल्ड की बात हो, या ब्राइडल कलेक्शन, एक ही नाम, दैट इज़ पी एम जी ज्वेलर्स, फ्रिस्को में लोकेटेड ऑन मेन स्ट्रीट। चलिए अगली सीरीज के जो गाना है वो भी आप ही की पसंद पर हम आपको सुनवा रहे हैं। एंड यू नो दिस सीरीज, आई एम श्योर यू हैव सीन दिस स्कैम 1992, जिसमें मुंबई नहीं बॉम्बे की बात है। एज यू नो आई थिंक बॉम्बे बिकेम मुंबई इन अर्ली 90s और मे बी 94-95 के बाद, जब भाई हम छोटे थे 80s-90s में हम तो बॉम्बे ही कहते थे। तो खैर उसकी सारी ये कहानी है। एंड यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट हर्षद मेहता, तो कैसे उनके साथ उनकी ज़िंदगी में कैसे उतार चढ़ाव आते हैं। और ये जो शानदार सीरीज़ है, थ्रिलर तो मैं नहीं कहूँगी, लेकिन बहुत ही खूबसूरती से सीरीज़ को डायरेक्ट किया था हंसल मेहता ने, जो खुद एक एक्चुअली पहले वो ही वॉज अ जर्नलिस्ट एंड देन ही स्टार्टेड डूइंग डायरेक्शंस एंड वो फिल्मों में या वेब सीरीज़ में आने लगे। ये सीरीज़ इतनी पॉपुलर हुई थी कि IMDb की रेटिंग पे इट वॉज 9.6 व्हेन इट वॉज रिलीज्ड इनिशियली, उसकी रेटिंग थी 9.6। इतनी लोगों को पसंद आई थी, हंसल मेहता की थी। एंड हंसल मेहता प्रतीक गांधी को अक्सर लेते हैं जब भी वो कोई भी सीरीज बनाते हैं, कोई भी मूवीज को डायरेक्ट करते हैं। प्रतीक गांधी इज हिज फेवरेट एक्टर, तो इस सीरीज में भी प्रतीक गांधी वॉज द मेन कैरेक्टर जिन्होंने हर्षद मेहता का रोल निभाया था। तो चलिए आप ही की पसंद पे मत कर माया को और अहंकार।

ओरिजिनली दिस इज कबीर बैंड. जी हाँ, ये जो गाना आप सुन रहे हैं कबीर बैंड ने गाया है और इसे इस्तेमाल किया गया था इस वेब सीरीज़ में जिसका नाम था स्कैम 1992. प्रतीक गांधी ने ये रोल निभाया था हर्षद मेहता का. इफ़ यू आर ग्रोन अप ड्यूरिंग 80s एंड 90s, आपको ये पता होगी कहानी पूरी. न्यूज़पेपर में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन इसी कहानी को पर्दे पर उतारा था हंसल मेहता ने. ही इज़ अ ग्रेट डायरेक्टर. कम फिल्म या कम सीरीज़ उन्होंने अब तक की है, लेकिन जहाँ जहाँ की है वेरी इम्पैक्टफुल सीरीज़. 9722355555 स्टूडियो का नंबर. मैं हूँ नीलम आपके साथ. आज कुछ गैर फिल्मी गाने बातें होती है हमारी इस सेगमेंट के दौरान. दैट इज एवरी संडे बिटवीन 1 and 2 PM ऑन 104.9. डू यू रिमेम्बर इमरान खान, एक हमारे आमिर खान के भांजे? ऑफकोर्स रिमेम्बर, राइट? वो अलग बात है कि बेचारे इतने आई वुडंट से हिट नहीं हुए, वो इतने चले नहीं जितनी कोशिश मामा ने बहुत की. मामू जान ने बहुत कोशिश की कि भांजे चल जाए, कहीं ना कहीं चल जाए. भांजे के लिए कुछ दली बेली, आई रिमेम्बर दैट मूवी, वो भी उन्होंने बना दी, लेकिन फिर भी भांजे नहीं चले. कुछ फिल्म्स की उन्होंने, हालांकि ऐसा भी नहीं था कि बॉलीवुड में वो दिखे ही नहीं थे. खैर, अब वो वापस आ रहे हैं OTT प्लेटफॉर्म पे. जी हाँ, सीधे OTT पर वो आ रहे हैं. उनकी लास्ट फिल्म आई थी कट्टी बट्टी, दैट वॉज अबाउट 10 to 11 ईयर्स अगो. अब ये जो OTT पर आ रहे हैं, उस फिल्म का नाम है अधूरे हम अधूरे तुम. तो उसमें इमरान खान की एक ये रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है जो OTT पर ही रिलीज होने वाली है, एंड ही इज़ लुकिंग फॉरवर्ड टू इट. उनका ये कहना है कि भाई चले, ये फिल्मों में नहीं चला तो क्या हुआ, आजकल OTT पर सब आ रहे, तो मैं भी अपनी किस्मत आजमा लूँ. इफ़ नॉट फिल्म्स तो किसी वेब सीरीज में काम कर लूँगा, लेकिन ज़रूर नज़र तो भाई ज़रूर आऊँगा. सो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ हैविंग दिस मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, राइट? कि अगर आप फिल्मों में नहीं चलते फॉर वॉट एवर रीज़न इट इज़, ऐसा नहीं है कि कोई ख़राब या बुरा एक्टर है या ऐसा ही एक्टर है. समटाइम्स यू नो इट डजेंट वर्क, इट जस्ट सिंपली डजेंट क्लिक. तो ये शायद कहीं हुआ है इमरान खान के साथ, एंड ही इज़ होपिंग नाउ कि इतने सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इतनी सारी सीरीज़ बन रही है, तो कहीं ना कहीं मेरी किस्मत आजमा ही लूँगा.

कविश बैंड, जी हाँ, इस बैंड का नाम, इस गाने का नाम जो है वो है तेरे प्यार में, लेकिन सिंगर का नाम है कविश और बैंड का नाम भी है कविश। ऐसे ही कुछ नए बैंड, कुछ सिंगर्स जिनकी आवाज़ें शायद आप अक्सर फिल्मों में नहीं सुनते, लेकिन बहुत ही खूबसूरत आवाज़ें होती है, एंड दे डू हैव डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स, डिफरेंट एवेन्यूज़ टू प्रेजेंट देयर स्किल्स एंड टैलेंट। तो वहीं कुछ हमारी भी कोशिश होती है यही सारी आवाज़ें आप तक पहुँचाएँ। चलिए कुछ और एक सीरीज़ की आपके साथ बात कर लूँ, वेब सीरीज़ की। यू नो देर हैव बीन मैनी मूवीज़ जहाँ पे दोस्तों की कहानियाँ की बात होती है, जैसे कि दिल चाहता है एंड मैनी मोर लाइक दैट। प्यार, व्हाट वाज दैट मूवी, आई एम ट्राइंग टू रिमेंबर। लेकिन ऐसी बहुत सारी मूवीज़ बनी है, तो अब वेब सीरीज़ भी बन रही है ऐसी जहाँ पे दोस्तों की कहानियाँ होती है। तो ये एक और वेब सीरीज़ आ रही है जिसमें एक यूट्यूबर है जिसका नाम है पूरव झा। ही इज़ अ वेरी फेमस यूट्यूबर और उनको ट्रेटर्स में भी काम मिला था। तो पूरव झा एक लीड रोल में है, उनके साथ नमन जैन, चंकी पांडे और सिकंदर खैर है। सिकंदर खैर जी हाँ, किरण खैर के बेटे, अनुपम खैर और किरण खैर के बेटे। और इस सीरीज़ का नाम है चार यार, नाम ही है ऐसा, चार यार, एंड इट वुड बी ऑन अमेजोन प्राइम जहाँ पे इस दोस्तों की कहानियाँ हैं, एंड इट्स अबाउट अ सस्पेंस एंड थ्रिलर। चार यार मिलकर कुछ गड़बड़ घोटाला होता है एंड वट दे आर ट्राइंग टू डिजॉल्व दैट, यही सारी कहानी है इसमें, दैट इज़ चार यार एंड रिलीज ऑन अमेजोन प्राइम। ऐसी कुछ बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, लेकिन गैर फिल्मी। जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दैट वॉज द फिल्म आई वॉज ट्राइंग टू रिमेंबर।

कुछ साल पहले उस्ताद सुल्तान खान ने बहुत अलग अलग हमारी जो भी गायिका है उनके साथ एक एल्बम्स की प्रस्तुति की थी जिसका नाम था उस्ताद एंड दीवास। जी हाँ, उस्ताद एंड दीवास, जिसमें उस्ताद सुल्तान खान, दी ग्रेट उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ है। लेकिन हर एक गाने में कहीं कहीं आप चित्रा जी की भी आवाज़ सुनेंगे, श्रेया घोषाल भी है, सुनिधि चौहान भी है, एंड देर आर डिफरेंट सिंगर्स इन सेम एल्बम। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एंड उस्ताद सुल्तान खान की आवाज़ के लिए क्या कह सकते, राइट? इट्स लाइक अ लेजेंडरी लेजेंडरी वॉइस, और इट्स एन आई थिंक ऑनर फॉर ऑल आवर बॉलीवुड सिंगर्स कि उनके साथ ये सारे गाने उन्होंने गाए हैं। एंड वंस अगेन द एल्बम इज़ उस्ताद एंड दीवास। बस ऐसे ही कुछ एल्बम्स की बातें, इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट की बातें, और ऐसे बहुत सारी संगीत की ही बातें, लेकिन गैर फिल्मी, ऑन 104.9 FM फनीशिया, एवरी संडे विथ मी योर होस्ट नीलम। तो बिल्कुल हमसे जुड़िएगा हर शनिवार और रविवार की दोपहर, और फनीशा तो है ही आप ही के साथ एवरी डे, सातों दिन, 24 घंटे। मैं नीलम लेती हूँ आपकी आज्ञा, अनुमति, इजाजत। मुलाकात होगी अगले शनिवार, तब तक के लिए कीप लिसनिंग एंड एंजॉइंग फनीशा रेडियो।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: ये last Diwali पहना था, ये नेहा की शादी में, इस पे तो already Instagram पर DP है।
4: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है।
5: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल, तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके।
6: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
5: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ। तथास्तु।
2: डिस्कवर स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी एंड फेस्टिव स्टाइल्स फॉर मेन एंड किड्स, ऑल एट इंडियन अटायर ऑन 2995 प्रेस्टन रोड, फ्रिस्को। इंडियन अटायर फ्रिस्को, योर डिवाइन डेस्टिनेशन फॉर फेस्टिव फैशन।
7: And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame, jahan tandoor ki smoky khushbu, sizzling flavors aur chatpate appetizers make an ordinary weekday feel like a delicious celebration. Every Monday through Friday from 5 to 8 p.m., order any two entrees and get one appetizer absolutely free. Bring your family, friends and your appetite. Visit Tandoori Flame in Garland. Terms and conditions apply.
8: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगू में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
2: वन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर। आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net। फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच।
4: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
9: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
4: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
9: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
7: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill, authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
2: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
7: Barista House, richness of biryani bliss.
2: Marvin Das and Bindas Services present the 6th annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.

0: right, guys. Unfortunately, that is our last song for today. You're listening to 104.9 FM Fun Asia Radio. I've been your RJ Rhea here from 2 p.m. to 3 p.m. I had an amazing time today talking about college football, Navratri, fall break, and so much more. I hope everyone enjoyed listening to our show. Whether or not you have to go back into school or work tomorrow or the day after or at any point this week, I hope all of you guys have a wonderful week. We have officially hit October. You know, I hope we all enjoy October. I hope we all enjoy the wonderful fall weather coming our way. Remember to pace yourself out. It's all gonna work out in the long run. I hope everyone has a great day. Don't go anywhere. Lots more fun music coming up.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume!
4: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels, India's finest, Dallas's newest.
5: Call 857-891-8942 today.
6: देसी फ्लेवर्स भी और टेक्सास के फेवरेट्स भी अब सब कुछ मिलेगा एक ही जगह HEB में सोना मसूरी राइस नानक पनीर पाले जी बिस्किट्स और बहुत कुछ वही ऑथेंटिक स्वाद जिसके साथ आप बड़े हुए हैं और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो आपको यहां पसंद है अब एक ही शॉपिंग ट्रिप में ज्यादा काम निपटाइए और इस समर जरूर देखिए HEB के नए DFW स्टोर्स मिड सिटीज अर्विंग और मर्फी में खुल रहे हैं तो आज ही अपने नजदीकी HEB पर जाएं और खरीदिए अपने ट्रेडिशनल्स और टेक्सन फेवरेट्स HEB हियर एवरीथिंग इज बेटर
7: Floors clean.
8: Check.
7: Windows clean.
8: Check.
7: Kitchen clean.
8: Check.
7: Air ducts clean.
8: Wait, air ducts भी clean करना होता है?
9: बिल्कुल. जो दिखता है, वो तो हम clean कर लेते हैं. लेकिन जो नहीं दिखता, उसका क्या? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology. No roto brush. Plus dryer vent or chimney cleaning. घर हो, restaurants, hotels, offices या फिर any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
10: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट sometimes, इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 years ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 Or visit astrologerishwar.com.
11: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
12: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
11: Kya matlab?
12: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
11: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
12: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
11: Ab to karna hi padega, madam.
13: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
14: Ye tara wo tara har tara.
15: Arre arre arre. Dallas ke aasman mein itne सारे तारा नहीं बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है तारा कमर्शियल एनर्जी 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर होटल्स गैस स्टेशंस वेयरहाउसेस मेडिकल फैसिलिटीज रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस तारा कमर्शियल एनर्जी पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 डेकेड्स कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे तारा कमर्शियल एनर्जी जो आपके बिजनेस को रोशन रखे
16: Want to explore properties in India? You don't need to fly to India.
5: The Gruh Pravesh India Property Expo is coming to Frisco. Meet top developers from Bengaluru, Hyderabad, Mumbai, Pune, Chennai and Delhi NCR. Explore 200 plus projects for your dream home or next investment. October 10th and 11th, Hath Regency Frisco, 10 a.m. to 8 p.m. Free entry, free parking. Gruh Pravesh India Property Expo by My Square Feet.
7: Hi, this is Konkona Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.

0: What, Chunka?
1: बोरिंग दिनचर्या में
2: घोलिए नए रंग फनेजा रेडियो के संग।

कभी खुशी कभी गम का टाइटल ट्रैक सुन रहे थे आप लता मंगेशकर की आवाज़ में। ये मल्टी स्टारर फिल्म 2001 में रिलीज हुई थी एंड इट वाज एक्चुअली द हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 2001। स्वागत करती हूँ तमाम सुनने वालों का। इफ़ यू हैव जस्ट ट्यून्ड इन, यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त तमरीन हसनात, और आज है हमारे सेगमेंट टेरिफिक 2000s की बारी, जिसमें पिछले संडे को हमने आगाज किया था 2000 की हिट फिल्मों के गानों के साथ, और आज बारी है 2001 की, जिसमें हमने आपको सुनवाया ये फैमिली ड्रामा फिल्म कभी खुशी कभी गम का टाइटल ट्रैक। दिस वाज अ मल्टी स्टारर फिल्म एंड इट वाज एक्चुअली बेस्ड ऑन अ बंगाली फिल्म कॉल्ड तुमी जे आमार, जो कि 1994 में रिलीज हुई थी। अच्छी कहानी थी, लोगों ने पसंद किया, तो बस फिर इसे हिंदी में बना दिया चोपड़ाज ने। इट वाज प्रोड्यूस्ड बाय यश जौहर, नॉट चोपड़ाज, करण जौहर ने इस फिल्म को लिखा और डायरेक्ट किया था। इस फिल्म में कहाँ से शुरू करूँ, अमिताभ बच्चन, जया बच्चन, शाहरुख खान, काजल, ऋतिक रोशन, करीना कपूर और रानी मुखर्जी मेन आई गेस कैरेक्टर्स में से थे। इस फिल्म को 5 अवार्ड मिले। बेस्ट एक्ट्रेस का मिला काजल को, बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला जया बच्चन जी को, और बहुत सारे दूसरे ऑनर्स भी मिले आईफा स्क्रीन एज वेल एज सी जी सिने अवार्ड्स में। और इस फिल्म को तकरीबन आई थिंक 100 डिफरेंट कंट्रीज में डिस्ट्रीब्यूट किया गया and it holds a record for the highest grossing Indian film in overseas markets till the next release, yani ke Johar Karan Johar ki film thi Kabhi Alvida Na Kehna 2006 mein, usse pehle tak this is the film that was leading the way. Film ko banane mein takriban 40 crore rupaye ki lagat aayi and it made 136 crore rupees back then, so that's something to say about a movie. Anyway, we're going to continue playing some of the best songs from 2001. Ek se ek badhiya gana aapko sunne ko milega and I guarantee you're going to enjoy it. It is 16 minutes past 3 on this 11th of October 2026. A super Sunday afternoon, and I want to tell you about SmartReach AI. Now, this is specially for business owners because you know that it's not just about how many people see or click your ad, it's about how many become your customers, right? So meet SmartReach AI. It's a FunAsia Network product which helps you reach potential local customers, even those visiting your competitors across radio, digital, streaming TV, and online audio. Then you get to measure what truly matters, yani ke calls, bookings, offer redemptions, and actual visits to your business. So if you want to learn more, visit smartreachai.us and turn local attention into customers.

ओके जनाब, अब हम अपने इस सेगमेंट को आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर चलते हैं सेकंड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की तरफ। हो सकता है आप इस वक्त ड्राइव कर रहे हैं, किसमें, गाड़ी में, रिक्शे में, रिक्शा कहाँ है यहाँ, क्या पता ट्रक में है, सनी देओल की तरह।

मैं निकला गड्डी लेके, उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, जो कि सनी देओल और अमीषा पटेल पर पिक्चराइज किया गया था फॉर द मूवी गदर, एक प्रेम कथा। गदर का एक्चुअल मीनिंग होता है बगावत यानी के रिबेलियन, और ये एक एक्शन ड्रामा फिल्म थी जिसे अनिल शर्मा साहब ने डायरेक्ट किया था। एंड आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस, बट इट वाज एक्चुअली लूसली इंस्पायर्ड बाय द रियल लाइफ स्टोरी ऑफ बूटा सिंह, जो एक ट्रक ड्राइवर था और उसे प्यार हो जाता है एक मुसलमान लड़की के साथ, एंड यू नो दे एक्चुअली गेट सेपरेटेड, दोनों बिछड़ जाते हैं बिकॉज ऑफ ऑल द पॉलिटिकल अपहीवल जो उस जमाने में, दिस इज़ यू नो ड्यूरिंग द पार्टीशन टाइम, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलग अलग हो रहे थे, और उसकी फैमिली उसे वापस पाकिस्तान ले जाती है। ये थी फिल्म की कहानी। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना चाहूँगी, फन फैक्ट, मैंने ये मूवी नहीं देखी। जी जी बिल्कुल नहीं देखी मैंने ये फिल्म, ना मैंने गदर 1 देखी है और ना ही उसका सीक्वल गदर 2 देखी है, विच आई अंडरस्टैंड वॉज ऑल्सो कमर्शियल ब्लॉकबस्टर। क्यों नहीं देखी, आई डोंट नो, इट जस्ट डिडंट हैपन। एनीवे, इस फिल्म को बनाने में तकरीबन 18.5 करोड़ रुपीज खर्च हुए, लेकिन इट ब्रॉट इन अ वोपिंग 133 करोड़। नो वंडर इट वाज अ सुपर डुपर हिट। ऑफ कोर्स काफी सारे अवार्ड्स भी इस फिल्म को मिले, नॉमिनेशंस तो बेशुमार थी, लेकिन फिल्म फेयर की स्पेशल परफॉर्मेंस अवार्ड मिला अमीषा पटेल को। आइए अब चलते हैं 2001 की थर्ड हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की तरफ। You are listening to Dil Se on 104.9 FM. अपने फीडबैक के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 972-235-5555.

आशा भोसले और उदित नारायण की आवाज में सुन रहे थे आप राधा कैसे ना जले। आमिर खान और ग्रेसी सिंह पर पिक्चराइज किया गया ये गाना 2001 की एपिक पीरियड स्पोर्ट्स ड्रामा फिल्म लगान से लिया गया था, ऑल्सो नोन एज लगान वंस अपॉन अ टाइम इन इंडिया। ये वो टाइम था जब हर फिल्म के साथ एक इंग्लिश डिस्क्रिप्शन जरूर अटैच कर दी जाती थी। वैसे लगान का मतलब है प्रॉपर्टी टैक्स, यू नो, जो जमीनों पर टैक्स लगता है उसे लगान कहा जाता है। खैर, इस फिल्म को आशुतोष गवारीकर ने लिखा था और इसे प्रोड्यूस किया आमिर खान ने, एंड ही वॉज ऑल्सो ऑफकोर्स द लीड इन दिस फिल्म। इसकी तारीफ में मैं क्या कहूँ, बस इतना कहूँगी कि इसको बनाने में जितने पैसे खर्च हुए थे उससे डबल ट्रिपल इस फिल्म ने बना लिए। इनफैक्ट इस फिल्म को इंडिया की एक बेहतरीन फिल्म माना जाता है, स्पेशली एटलीस्ट वन इट कम्स टू 2000s, यू नो, इसमें इट डज हैपन टू बी द फोर्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ द ईयर, लेकिन जनरली कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ द बेस्ट मूवीज ऑफ the decade. So I'm glad I was able to entertain you with the song, and we're going to continue with all the best songs from 2001.

0: Your Dubai investment opportunity is here. Success Real Estate and Danu Properties present the Grand Dubai Property Show, October 17th and 18th, 10 a.m. to 9 p.m. at Lux Hotel Arlington. Explore luxury properties with payment plans starting at $1,300 a month. Meet the developer directly, book at the show, and qualify for round-trip flights to Dubai and a luxury hotel stay for two. Call Habib Mita at 954-790-2620. That's 954-790-2620.
1: That garba was totally worth it. We had so much fun.
2: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
1: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
3: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th and 23rd after your garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your garba may end, but the party doesn't.
4: सुनो सुनो सुनो सारे मैकन्नी वाले सुनो, हाईवे 380 पर खुल गया है पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर। अब एनुअल फिजिकल के लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, सेम डे अपॉइंटमेंट के लिए इंतजार करने की जरूरत नहीं और पूरे परिवार के भरोसेमंद डॉक्टर्स की तलाश भी खत्म। सुनो सुनो सुनो, स्वास्थ्य का नया ठिकाना पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, अब मैकन्नी में हाईवे 380 पर।
5: एनुअल फिजिकल्स, प्रिवेंटिव केयर, सेम डे अपॉइंटमेंट्स, क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट और केयरिंग फिजिशियंस, सब एक ही जगह। कॉल टुडे और टेक्स्ट 214-666-6259।
6: फैमिली को चाहिए नॉर्थ इंडियन, फ्रेंड्स को साउथ इंडियन, अब जाए तो जाए कहाँ?
7: सिंपल, बसेरा ग्रैंड, वन डेस्टिनेशन डबल द फ्लेवर।
8: मतलब क्रिस्पी गोल्डन डोसा?
7: यस, रिच नॉर्थ इंडियन फेवरेट्स, फ्लेवरफुल लोडेड बिरयानी और एक डिलिशियस बुफे जहाँ चॉइसेस ही चॉइसेस हैं।
8: वाओ, ग्रेट फूड, फुल वैरायटी एंड एवरीवन्स हैप्पी।
6: फैमिली डिनर हो या फ्रेंड्स के साथ सेलिब्रेशन, मेक एवरी मील ग्रैंड एट बसेरा ग्रैंड। बसेरा ग्रैंड, कम हंग्री, लीव हैप्पी टुगेदर।
9: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
10: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
9: नहीं।
10: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
9: नहीं।
10: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
9: वो भी नहीं।
10: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
11: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG FinTax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी।
12: AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
13: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
14: Filmon ka maza action, drama aur romance mein hai. Aur khane ka maza har flavor ke zabardast performance mein.
15: Kabhi chatpata sa twist, kabhi teekha sa kick, kabhi meetha sa sukoon.
14: Jahan har flavor kare full on entertain. The Flavor Lounge.
15: Papri chaat se malpua rabri tak, har dish mein mile zindagi ke flavors ka asli swaad. Visit their new website or download the Flavor Lounge app for exclusive deals. The Flavor Lounge, हर बाय सुपर हिट।
16: हर मोहब्बत की आवाज, द वन एंड ओनली लिविंग लेजेंड राहत फतेह अली खान।
17: राहत फतेह अली खान,
18: एक्सपीरियंस वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर 2026। राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर।
16: ब्रॉट टू यू बाय रेहान सिद्दीकी, डॉक्टर यास्मीन कुरैशी एंड ट्रू पेमेंट सॉल्यूशंस। फ्राइडे अक्टूबर 16, 8:30 PM, कमेरिका सेंटर, फ्रिस्को।
18: ग्रैंड स्पॉन्सर कराही पॉइंट प्लेनो के एक्सक्लूसिव कंसेशंस के साथ।
16: टिकट्स ऑन टिकटमास्टर एंड सुलेखा.com।
19: जग घूमे थारे जैसा ना कोई।
20: स्वागत करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू 104.9 FM। मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात, एंड आई बी विथ यू टिल 6 PM। इट इज 34 मिनट्स पास्ट 3 ऑन दिस 11th of October 2026, अ सुपर संडे आफ्टरनून। क्या चल रहा है, कहाँ जा रहे हैं या कहीं से आ रहे हैं या किसी के साथ आज का ये संडे आफ्टरनून बिता रहे हैं? वेयर एवर इट इज दैट यू आर, आई होप यू हैप्पी एंड हेल्थी। थैंक यू फॉर मेकिंग अस पार्ट ऑफ योर डे। आज हम आपको एंटरटेन कर रहे हैं विद द ब्लॉकबस्टर हिट्स ऑफ द ईयर 2001। आई हैव अ ग्रेट सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स लाइंड अप एंड आई गारंटी यू आर गोइंग टू ईच एंजॉय ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। बिफोर वी मूव ऑन, आई वांट टू टेल यू अबाउट ग्रह प्रवेश व्हिच इज हैपनिंग right now. That's right. If you're planning to buy your dream home or make a smart property investment in India, you've got to visit the Graha Pravesh India Property Expo, which is presented by My Square Feet. The biggest India Property Expo in Frisco, you can meet leading developers from Bengaluru, Hyderabad, Chennai, Mumbai, Pune, and Delhi NCR. And you'll get to see 200 exciting projects all under one roof. Now, this is happening right now. They are at the Hyatt Regency Frisco. 8 baje tak aapke paas time hai. So till 8 p.m. you can go and visit with them, because entry be free hai aur parking bhi. So you know what? You can find that perfect property in India. And it's right here at Graha Pravesh India Property Expo. Alright, commercial break से पहले जो गाना हमने play किया था वो film Indian से लिया गया था. It was an action thriller film जिसे N. Maharajan साहब ने direct किया था. Actually उन्होंने एक Tamil film बनाई थी which was called Valarasu, ठीक है, और उसी को फिर हिंदी में प्रोड्यूस किया धर्मेंद्रा प्रोडक्शन ने अंडर विजेता फिल्म्स. सो धर्मेंद्र साहब ने फिर ऑब्वियसली अपने बेटे सनी देओल को कास्ट किया इस फिल्म में. साथ में थी शिल्पा शेट्टी, डैनी डेंजोंगपा एंड राज बब्बर, एज वेल एज मुकेश ऋषि एंड राहुल देव. ये फिल्म अक्टूबर 2001 में रिलीज हुई थी और लोगों ने इसे बहुत पसंद किया. आई मीन इट एक्चुअली मेड ओवर 42 करोड़, जबकि इसको बनाने में सिर्फ 15 करोड़ लगे थे. सो लोगों ने इसे पसंद किया, इन्जॉय किया. आई डोंट थिंक इस फिल्म के गाने इतने ज़्यादा सुपर हिट नहीं थे, लेकिन फिर भी यू नो द मूवी मेड मनी. इट वॉज द फोर्थ हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 2001. आइए कंटिन्यू करते हैं हमारे हिट गानों का ये सिलसिला और चलते हैं अगले गाने की ओर.

चाहता है, व्हाट योर हार्ट डिजायर्स, हम सबका कुछ ना कुछ दिल चाहता है. वेल, अच्छे गाने सुनने का दिल अगर चाहता है तो फनी शर रेडियो सुनते रहिए, स्पेशली ऑन सैटरडे संडे, बिकॉज माय गोल इज टू मेक श्योर दैट आई एंटरटेन यू विद द बेस्ट म्यूजिक आउट देयर. नाउ, फिल्म दिल चाहता है फरहान अख्तर के लिए एक बहुत खास फिल्म थी, बिकॉज ये इनकी पहली फिल्म थी एज ए डायरेक्टर. इस फिल्म को वैसे प्रोड्यूस किया था रितेश सिद्धवानी साहब ने, एंड दिस वाज अ कमिंग ऑफ एज ड्रामा कॉमेडी फिल्म. आई डोंट रिमेम्बर दिस एज मच एज कॉमेडी, आई मीन देयर वाज एंटरटेनमेंट, पर काफ़ी इमोशनल और मेलो ड्रामा भी था. आमिर खान, सैफ अली खान, अक्षय खन्ना, प्रीति जिंटा, सोनाली कुलकर्णी और डिम्पल कपाडिया ने लीड रोल अदा किया था इस फिल्म में. इनफैक्ट 49th नेशनल फिल्म अवार्ड्स में इस फिल्म को बेस्ट फीचर फिल्म इन हिंदी का अवार्ड मिला. तकरीबन 13 नॉमिनेशंस मिली इसको 47th फिल्म फेयर अवार्ड्स में, जिसमें से 7 इन्होंने जीती. बेस्ट फिल्म का क्रिटिक्स, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर अक्षय खन्ना को मिला, बेस्ट कमेडियन का अवार्ड सैफ अली खान को मिला. इवन इट्स सो फनी बिकॉज आई डोंट सी सैफ अली खान एज अ कमेडियन, बट आई गेस हिज रोल इन दिस मूवी वॉज प्रिटी कॉमिकल. एनीवे, बट ओवर द टाइम इतने सालों में इस फिल्म को यू नो दे सी दिस एज ए कल्ट फिल्म, यू नो अ यूथ रिलेटेड फिल्म, और इट रियली डिड डू वेरी वेल एट द बॉक्स ऑफिस एज वेल. काफ़ी सारी इस फिल्म की शूटिंग जो थी वो ऑस्ट्रेलिया में हुई, ऑल्सो ऑन लोकेशन इन इंडिया, अलग अलग जगहों पर. एंड कहा जाता है कि फरहान अख्तर ने जो कुछ चीज़ें इस फिल्म के बारे में लिखी, उन्होंने कहा कि उनकी जो पर्सनल डायरीज थी, जब उन्होंने ट्रैवल किया, उन्होंने उसमें से काफ़ी कुछ लिया इस फिल्म की कहानी में तड़का लगाने के लिए. ऑलराइट, यू आर लिस्टिंग टू दिल से, और 2001 की ब्लॉकबस्टर फिल्मों के गाने आज हम आपको सुनवा रहे हैं. दिस वॉज अ 5th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म, और चलें फिर 6th हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म के गाने की तरफ. ना, आमतौर पे इस फिल्म का जब भी मैं गाना लगाती हूँ, इट्स ऑलवेज बिन द टाइटल ट्रैक. आज मैंने सोचा नहीं, टाइटल ट्रैक नहीं लगाना. इसका एक और गाना था जो बहुत पॉपुलर हुआ था अपने टाइम में, स्पेशली व्हेन इट केम टू डांसिंग. सो इफ यू फील लाइक डांसिंग, गो फॉर इट.

अब्बास मस्तान का डायरेक्ट किया हुआ ये ड्रामा यानी के मूवी चोरी चोरी चुपके चुपके का गाना था जो अभी हमने आपको सुनवाया. दिस वाज द सिक्स्थ हाईएस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ 2001. इसमें थे सलमान खान, साथ में रानी मुखर्जी और प्रीति जिंटा. इवन दो इस फिल्म की कहानी काफी कंट्रोवर्शियल थी, इट स्टिल डिड ग्रेट एट द बॉक्स ऑफिस. और यू नो इन ऑल ऑनेस्टी मुझे तो ये कहानी ऐसा समझ में नहीं आई. सरोगेट चाइल्ड बर्थ का तो सिस्टम मुझे समझ में आता है, लेकिन फिर भी जिस तरह से उन्होंने ये फिल्म बनाई थी एंड ऑल दैट, इट वाज जस्ट काइंड ऑफ अ लिटल ऑफ. बट यू नो व्हाट इट इज़, पीपल स्टिल लव्ड एंड एन्जॉयड वॉचिंग द मूवी. इट वॉज एंटरटेनिंग, हैड सम ग्रेट म्यूजिक एंड ऑफकोर्स ग्रेट एक्टिंग. और प्रीति जिंटा को इनफैक्ट बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस नॉमिनेशन भी मिली एट द 47th फिल्म फेयर अवार्ड. All right, let's continue on with our segment. If you've just tuned in, aap sun rahe hain program Dil Se, and we are hosting the special segment of the terrific 2000s, jisme hum focus kar rahe hain 2000 ke decade par. Aur aaj bari hai 2001 mein release hui हिट फिल्मों के हिट गानों की.

What a beautiful song, Kumar Sanu और Alka Yagnik की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना, taken from the movie एक रिश्ता. ये गाना अक्षय कुमार और करिश्मा कपूर पर पिक्चराइज किया गया था. एंड एक रिश्ता, द बॉन्ड ऑफ लव, सुनील दर्शन साहब ने इसे डायरेक्ट किया था. एंड इस फिल्म में थे अक्षय कुमार के अलावा अमिताभ बच्चन, राखी गुलजार, जूही चावला and Monish Bahal. Now, this was, I would say, a true family drama. Matlab, jaisa drama takriban har desi family mein hota hai, ye koot koot ke bhara hua tha is film mein. The movie did do well at the box office and made quite a bit of money. 15 crore lage the ise banane mein, and it made almost 37 crore rupees at the box office. Now, I have a very funny memory of this film. मुझे ऐसे लग रहा था, एक ज़माना था आई थिंक जब मैं बहुत बहुत हसमुख हुआ करती थी. अब मैं थोड़ी आई थिंक सोबर हो गई हूँ, पर पहले मैं बहुत हसमुख और खुश खुर्रम रहने वाली लड़की थी. एनीवे, तो तब ये फिल्म मुझे बहुत रोने धोने वाली लगी. एंड आई जस्ट वॉज लाइक, इवन दो आई वॉज एन्जॉइंग द मूवी एंड आई वॉज विद सम फ्रेंड्स, आई केप टॉकिंग एंड आई वॉज लाइक, ओ माई गॉड, बस रोते ही जा रहे हैं, रोते हर कोई. कोई अभी ये रो रहा है, कभी माँ रो रही है, कभी बाप रो रहा है, कभी गर्लफ्रेंड रो रही है, कभी बॉयफ्रेंड रो रहा है, कोई ना कोई तो रो ही रहा है इस फिल्म में. और उसके बाद यू नो इस में हीरो हीरोइन की शादी हो जाती है, राइट? एंड द फ्रेंड्स हु वर सिटिंग राइट नेक्स्ट टू मी, आई सेड टू देम, यू नो व्हाट, शर्त लगा लो मुझसे, अभी ये जो हॉस्पिटल में ना अभी बच्चा पैदा होगा ना, आई गारंटी यू रोते हुए पैदा होगा. एंड द नेक्स्ट थिंग यू हियर इज द बेबी क्राइंग एंड आई बर्स्ट आउट लाफिंग एंड आई थिंक पीपल इन द ऑडिटोरियम वॉन्ट वेरी हैप्पी बिकॉज आई वॉज टू लाउड. But it was funny. And I was like, अगर ये मूवी देखनी है तो टिश्यू का डब्बा साथ लेके जाएं.

Another multi-starter from 2001. This song was taken from the film Yaade. Aawazein thi Sonu Nigam aur Alka Yagnik ki. Ye gana picturize kiya gaya tha Hrithik Roshan aur Kareena Kapoor par. Waise is film mein Jackie Shroff aur Amresh Puri bhi the. This was another drama film produced, directed and edited by Subhash Ghai himself. और इस फिल्म की काफी सारी शूटिंग इंडिया के अलावा यूके और मलेशिया में भी हुई थी. चूंकि वक्त कम है, आई वांट टू मेक श्योर आई प्ले ऑल द सॉन्ग्स फ्रॉम द टॉप 10 मूवीज ऑफ 2001. वी विल गो अहेड एंड मूव ऑन टू दिस ट्रैक फ्रॉम द फिल्म लज्जा.

I must say, इस गाने में माधुरी दीक्षित looked ravishing. राजकुमार संतोषी साहब ने इस फिल्म को प्रोड्यूस और डायरेक्ट किया था. एंड दिस वॉज यू नो आई गेस अ फेमिनिस्ट काइंड ऑफ अ मूवी जिसमें मनीषा कोराला, रेखा महिमा चौधरी भी थी. एंड देर वॉज ऑल्सो अनिल कपूर, अजय देवगन, जैकी श्रॉफ एंड डैनी डेंजोंगपा. आई गेस 2001 में ये एक ट्रेंड बन गया था कि हर फिल्म में मल्टीपल स्टार्स होंगे. वेल इट डिड गेट नॉमिनेटेड फॉर 3 अवार्ड्स और 2002 के जी सिने अवार्ड में इट माधुरी दीक्षित को बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला था. All right, let's move on now to the last as the 10th highest grossing film of 2001, and that was Jodi number 1. And as we conclude this segment really quickly, I want to tell you about Relative Media. Fun Asia Network now brings in media expertise to your social media with Relative Media. From engaging reels and graphics to captions, content distribution and amplification through Fun Asia's radio, digital and community platforms, Relative Media gives your brand a complete content solution. All you gotta do is call 469-424-3188 to book your content audit today. Relative Media. Powered by Fun Asia Network.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Floors clean.
7: Check.
6: Windows clean.
7: Check.
6: Kitchen clean.
7: Check.
6: Air ducts clean.
7: Wait, air ducts bhi clean karna hota hai?
8: Bilkul. Jo dikhta hai, wo to hum clean kar lete hain. Lekin jo nahi dikhta, uska kya? That's where Duct Time comes in. Professional duct cleaning with negative pressure technology, no roto brush, plus dry vent or chimney cleaning. Ghar ho, restaurants, hotels, offices, ya phir any business. Duct Time cleans beyond what you can see. Call Jeetu Patel at 972-877-2500.
9: Who are the employees your company simply cannot afford to lose? And are you doing enough to reward and retain them? An executive bonus plan using life insurance can be a flexible way to offer select key employees valuable protection today and potential future benefits later. To learn whether this strategy may fit your business, visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution. Product subject to carrier approval, policy terms and state availability. Guarantees depend on the issuing carrier. Consult qualified legal and tax professionals before implementing any business insurance strategy. Not legal, tax, investment or financial advice.
10: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
11: Are sun, ye astrologer bol raha hai 2026 teri rashi walon ke liye bahut lucky hai.
12: Ma, reels pe sab lucky hi hote hain. Generic predictions sabko thodi help karti hain. To phir agar real clarity chahiye to personalized guidance lo.
13: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
12: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
14: What if your next home came fully loaded with over $35,000 in premium appliances, electronics and designer furnishings included? This nearly new home in Cambridge Crossing, Selina first occupied in January, is available as the seller relocates. Enjoy resort-style amenities, upgraded interiors and truly move-in ready. Just bring your suitcase. Buyer's agents, get your client under contract by October 15th and earn an additional $2,000 bonus. Call Navneeta Khemka with Keller Williams Realty at 347-449-4242.
15: Every home has a story. Let's create yours together.
16: Order, order. Mr. Impressions, campaign ka result.
17: Your Honor, hazaron logon ne ad dekha.
16: Miss Clicks.
18: 100 logon ne click bhi kiya.
16: Customers kitne aaye?
15: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
8: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.
19: Ye last Diwali pehna tha. ये नेहा की शादी में इस पे तो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर डीपी है.
20: हे भगवान, मेरे पास पहनने के लिए कुछ भी नहीं है.
21: जब वार्डरोब में हो फैशन का अकाल तो सीधा इंडियन अटायर जाओ बालिके.
19: प्रभु, डिस्काउंट भी मिलेगा?
21: ऑफ कोर्स, फेस्टिव कलेक्शन पर अप टू 25% ऑफ. Tathastu.
14: Discover stunning lehengas, elegant saris, bridal jewelry and festive styles for men and kids, all at Indian Attire on 2995 Preston Road, Frisco. Indian Attire Frisco, your divine destination for festive fashion.
22: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
23: Koi
0: खुशामदीद कहती हूँ तमाम सुनने वालों को. थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन टू 104.9 FM फनीशा रेडियो, bringing the community together. Hope it all is well at your end. बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करती, बस खैर खैरियत आप लोगों की पूछ लेती हूँ. 88 degrees Fahrenheit is the current temperature. Today's high 89, low of 68. It's really nice outside. So if you have a convertible, why don't you drive around top down? Because then you can really enjoy the breeze. Today is the 11th of October 2026. क्या आज आपकी बर्थडे है? Well, happy birthday to you. किसी और ने विश नहीं किया, आप देख लें, मैं नहीं भूली, मैंने याद से आपको विश किया. हैप्पी बर्थडे टू यू, मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, एंड दोज ऑफ यू सेलिब्रेटिंग योर एनिवर्सरी, हैप्पी एनिवर्सरी टू यू. और अगर आपके सिग्निफिकेंट अदर को याद नहीं है तो आप उनको बता दें, कोई बात नहीं, क्या पता किसी सदमे की वजह से उनकी याददाश्त चली गई है, आप उन्हें बता दें कि अजी सुनते हो आज हमारी एनिवर्सरी है. Whatever it may be that you're celebrating, I hope it brings you happiness and joy. Well, अब शुरू कर रहे हैं हम अपना नेक्स्ट सेगमेंट जिसका नाम है शब्द. अगर आप ये सेगमेंट पहली बार सुन रहे हैं तो थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोडक्शन दे देती हूँ. हम कोई एक वर्ड सेलेक्ट करते हैं और उस वर्ड से रिलेटेड गाने आपको सुनवाते हैं फॉर द नेक्स्ट वन आवर. अब शुरुआत हम पुराने गानों से करते हैं, लाइक 50s से शुरू करती हूँ, फिर 60s, 70s, 80s, 90s, 2000 अप अनटिल टुडे, बिकॉज उस वर्ड का कोई ना कोई गाना किसी ना किसी डेकेड में ज़रूर रहता है. तो तकरीबन समझ लें आप 10-12 गाने तो आराम से हो जाते हैं. सो इट हैज़ अ नाइस वैरायटी बिकॉज इसमें कोई जानरा का रिस्ट्रिक्शन नहीं होता. तो कोई उदास गाना हो सकता है, कोई खुशी वाला गाना हो सकता है, कोई स्लो गाना हो सकता है, कोई फास्ट गाना हो सकता है. सो इट्स अ नाइस वैरायटी, पर मेरी कोशिश होती है कि अच्छे अच्छे गाने ही आपको सुनाऊँ. और सबसे पहला गाना जब मैं सुनाती हूँ तो मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि आप गेस करने की कोशिश करें कि आज का वर्ड, आज का लफ्ज़ क्या है. अब हिंट मैं बस इतनी देती हूँ कि मुखड़े में ही वो वर्ड आपको मिल जाएगा, यानी कि गाने की पहली 2-3 लाइनों में, एज इन द फर्स्ट पार्ट ऑफ द सॉन्ग, जो मेन उसका है इंट्रो गाने का, उसी में आपको वर्ड मिल जाएगा और आप गेस कीजिए. और ज़रूरी नहीं कि अगर आप एक दफ़ा कॉल करें, एक वर्ड गेस करें, वो गलत होता है, आप फिर से कॉल करें, दूसरा वर्ड गेस करें. और अगर आप सही गेस करते हैं, सो द फर्स्ट पर्सन टू गिव मी द करेक्ट आंसर विल विन अ $10 गिफ्ट कार्ड फ्रॉम फन पिज्ज़ा किचन. और फन पिज्ज़ा किचन किसे अच्छा नहीं लगता? They have some of the best pizzas, pastas, sandwiches. They've got it all. And their chicken wings are great too. Salads bhi hain. Agar aap diet pe hain, toh you can try that. And they've got the Mexican style pizza. They got the Italian style pizza. And of course, desi style pizza toh hai hi. Yani ke tikha mast pizza. I happen to be one of their biggest fans. And I know that during this Garba festival, raat ko they're open really, really late. So aap call karke you can find out, or you can just visit funpizzakitchen.com to get their exact hours. All right, so aap log taiyar hain? I'm going to play the first song. Number de deti hu aapko, so you can call me. And remember, you can call multiple times. Agar ek baar aapka tukka ya aapki guess sahi nahi thi, it's okay, you can call again. 972-235-5555. Dusra gana play karne se pehle aapne guess karna hai. 972-235-5555. ये रहा हमारा पहला गाना जो कि फिल्म श्रद्धा से लिया गया है. एंड और इज इट शारदा, श्रद्धा, शारदा, नॉट श्योर. 1957 में रिलीज हुई थी ये फिल्म. ये गाना मीना कुमारी पर पिक्चराइज किया गया है.

भाई वाह, आज तो सच में कमाल हो गया। पहली कॉल, पहली कॉलर ने ही बिल्कुल सही जवाब दिया। आज का वर्ड, आज का लव्स, आज का शब्द है राम। सो आज के जितने भी गाने होंगे उसमें आप सुन पाएंगे ये वर्ड। सो 50 से आइए चलते हैं 60s की तरफ।

का करूं राम, मुझे बुढ़ा मिल गया। लता जी की आवाज में सुन रहे थे आप संगम फिल्म का ये गाना, जो कि वैजयंती माला और राज कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म आई बिलीव इट केम आउट बैक इन 19

थे आप संगम फिल्म का ये गाना, जो कि वैजयंती माला और राज कपूर साहब पर पिक्चराइज किया गया था। ये फिल्म आई बिलीव इट केम आउट बैक इन 64 में रिलीज हुई थी ये फिल्म। 60 से आइए चलते हैं 70s तक।

व्हाट अ लवली लवली सॉन्ग है, बेख्तियार होकर इसके साथ गुनगुनाने को जी करता है। लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाज़ में सुन रहे थे आप ये बेहतरीन गाना, जो कि आई बिलीव रणधीर कपूर और रेखा जी पर पिक्चराइज किया गया था। 1972 में रिलीज हुई थी ये फिल्म, आई बिलीव इट वॉज कॉल्ड रामपुर का लक्ष्मण। यू आर लिसनिंग टू द शब्द सेगमेंट ब्रॉट टू यू इन पार्ट बाय एजी फिनटेक्स, one of the fastest growing tax firms in the US. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient and get you ready for the future. Call KJ 469-942-9888 or visit agfintax.com. Jo agla gana aapko sunwa rahi hu wo bhi 70s ka hi hai, bada acha gana hai. Unfortunately uski sound

क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि ये गाना शामिल करना चाहिए आज के सेगमेंट में, इसीलिए गीत गाता चल फिल्म का ये गाना आपको सुनवा रहे हैं. अगेन आई अपोलोजाइज, आई कुड नॉट फाइंड अ बेटर वर्जन ऑफ दिस सॉन्ग.

राम तेरी गंगा मैली हो गई। सुन रहे थे आप ये टाइटल ट्रैक लता मंगेशकर की आवाज में, जो कि पिक्चराइज किया गया था मंदाकिनी पर, अपने जमाने की सुपरहिट फिल्म थी, 1984 में रिलीज हुई थी। आइए अब लेकर चलते हैं आपको 1988 के इस गाने की तरफ, विच ट्रूली फिट्स द बिल फॉर आर सेगमेंट शब्द, जिसमें आज का वर्ड है राम।

करते करते इकरार कर लिया, राम अवतार फिल्म का ये गाना सुन रहे थे आप अनुराधा पौडवाल की आवाज में। ये गाना श्रीदेवी और सनी देओल पर पिक्चराइज किया गया था। इट्स 25 मिनट्स पास्ट 4। यू आर लिसनिंग टू दिल से ऑन 104.9 FM। आई एम योर होस्ट अमरीन हसनात और इस वक्त शब्द का सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आज का वर्ड, आज का लफ्ज है राम, इसीलिए उसी से रिलेटेड गाने सुन रहे हैं आप। शुरुआत की थी हमने पुराने गानों से, एज इन 50s से, और हम पहुंच गए हैं 80s तक।

0: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
1: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
3: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
2: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
3: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn. Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: That garba was totally worth it. We had so much fun.
5: I lost so much of calories today and I'm starving. But it's so late. Where can we eat now?
4: Don't worry. There's always Fun Pizza Kitchen Frisco.
6: Fun Pizza Kitchen Frisco will be open until 3 a.m. on select Garba nights. Enjoy delicious pizzas with mouth-watering toppings, exciting specialty flavors, pasta, and much more. Visit on September 25th and 26th and October 2nd, 4th, and 23rd after your Garba fun until 3 a.m. Fun Pizza Kitchen Frisco. Your Garba may end, but the party doesn't.
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: Welcome to the Shadi Memory Test. Rapid fire round start karte hain. Decorations ka color.
11: Next question.
10: Bride ki entry song.
11: Yaad nahi.
10: Buffet mein kya tha?
11: Chana papri chaat, bihari kebab, dilli nihari, achari chicken, mutton biryani.
12: Shadi mein baaki details bhool sakte hain, lekin khana kabhi nahi. Gatherings 50 ki ho ya 500 guests ke liye. Choose signature cuisines, customized catering, live cooking stations and professional service. Call 972-905-5449. Signature cuisine, the taste your guests will remember.
13: ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಈಗ ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿದೆ. ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು, ಹೈದರಾಬಾದ್, ಚೆನ್ನೈ, ಮುಂಬೈ, ಪುಣೆ ಮತ್ತು ಡೆಲ್ಲಿ ಎನ್ಸಿಆರ್ ಎಂದ ಟಾಪ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ರೂಫ್ ಕೆಳಗೆ. 200+ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಸೂಟ್ ಆಗುವಂತ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ದಿನಾಂಕ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10th and 11th. ಸ್ಥಳ ಹಯತ್ ರೀಜೆನ್ಸಿ ಫ್ರಿಸ್ಕೋ. ಸಮಯ ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ರಾತ್ರಿ 8 ಫ್ರೀ ಎಂಟ್ರಿ, ಫ್ರೀ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಮೈ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಇಂದ ಬರುತ್ತಿರುವ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪೋ ಅನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಬೇಡಿ.
14: कस्टमर्स हिंदी में मिलते हैं, तेलुगु में भी, पंजाबी में भी और तमिल में भी, तो ऐड सिर्फ एक लैंग्वेज में क्यों?
15: फन एशिया नेटवर्क के साथ रीच कीजिए DFW के मल्टीपल देसीज को एक ही पावरफुल नेटवर्क पर. आज ही कॉल करें 4694243188 और ईमेल sales@funasia.net. फन एशिया नेटवर्क, वन नेटवर्क, मेनी लैंग्वेजेस एंड मैक्सिमम रीच.
16: मकदम करती हूँ एक बार फिर तमाम सुनने वालों का. आप सुन रहे हैं प्रोग्राम दिल से. मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त अमरीन हसनात. आई बी विथ यू टिल 6 PM. इट इज 4:34 ऑन दिस 11th of October 2026 एंड इट्स ए सुपर संडे आफ्टरनून. द वेदर इज अमेजिंग. आई होप यू आर आउट एंड अबाउट एंजॉयिंग दिस लवली वेदर. और इस खूबसूरत मौसम में हम आपके लिए पेश कर रहे हैं मिले जुले गानों का ये सिलसिला, यानी कि शब्द का सेगमेंट. हमारे आज के शब्द सेगमेंट में वर्ड है राम. सो हम आज आपको ऐसे तमाम गाने सुनवा रहे हैं जिनमें मुखड़े में, एज इन गाने की पहले पार्ट में, वर्ड राम आपको सुनने को मिलेगा. शुरुआत की थी हमने 50s के फिल्मी गीतों से, फिर 60s, 70s, 80s और अब आ गई है बारी 90s की.

वाह वाह राम जी, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग. सलमान खान और माधुरी दीक्षित पर पिक्चराइज किया गया ये गाना. फिल्म हम आपके हैं कौन से लिया गया था. और अगर मेरे बारे में सोच रहे हैं कि हम आपके हैं कौन, आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आइए चलते हैं अगले गाने की तरफ. दिस इज ऑल्सो फ्रॉम द 90s. सोनू निगम, अलका याग्निक और उदित नारायण ने गाया ये गाना, टाइटल ट्रैक फॉर द फिल्म राम जाने. आज का शब्द राम.

स्वदेश फिल्म से लिया गया ये गाना मधुश्री की आवाज में सुन रहे थे आप। इफ यू जस्ट ट्यून्ड इन, शब्द सेगमेंट आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। टुडेज वर्ड इज राम, इसीलिए जितने भी गाने आप आज सुनेंगे 5 बजे से पहले, दे आर गोइंग टू हैव दैट वर्ड इन देम। आई एम नॉट टेकिंग रिक्वेस्ट, बट आई हैव अ ग्रेट लिस्ट ऑलरेडी, यू आर गोइंग टू एंजॉय द सॉन्ग्स। नाउ बिफोर आई मूव ऑन, आई जस्ट वांटेड टू चेक रियल क्विक, हाउ मेनी ऑफ यू हैव विजिटेड Page 3 Eatery, which is located on Hub 121. You're kidding me. आप नहीं गए अभी तक? Why not? I mean, it's a great place. They've got, you know, everything that you want, especially if you're looking for fusion desi food. अब आपको कबाब पसंद है या आपको flavorful चाट चाहिए या, you know, something munchies or maybe mocktails, whatever. They've got it all. और ambiance उनकी इतनी अच्छी है कि आप चाहे brunch पे जाएं, lunch पे जाएं, dinner पे या किसी date पर, you're going to like Page 3 Eatery. Even if you are a foodie and you're just meeting a bunch of friends to eat, you know, I think I'm a foodie. I love good food. So I enjoy Page 3 Eatery, not just for the food, but also for the ambience, because I also like it nice. Matlab, I know kuch logon ko wo dhaba style pasand hai. That's not me. I mean, yeah, I guess I could do dhaba style, but I really like nice ambiance, nice seating area, good service. Well, you're going to get it at Page 3 Eatery. If you want to find out kya kehte hain apna ke, you know, kya kya hai unke menu par and, you know, what all is there, just check out their website, page3eatery.com. और अब कंटिन्यू करेंगे हम अपना शब्द सेगमेंट, एंड आई थिंक सो फार मैंने काफ़ी सारे गाने प्ले किए विद द वर्ड राम। मेरा जो फेवरेट पुराना गाना था, आई प्ले दैट विच वॉज गुम है किसी के प्यार में दिल सुबह शाम हाय राम, दैट वॉज वन ऑफ माई फेवरेट वन इट कम्स टू ओल्डीज। एंड नाउ वन इट कम्स टू द न्यू स्टफ, ओह माई गुडनेस, दिस इज गॉट टू बी द अल्टीमेट। आई लव दिस वन, एवरी टाइम आई हियर इट आई फील लाइक डांसिंग, एंड यू नो वट, यू माइट टू, पर अगर आप ड्राइव करें, नो डांसिंग, बस सर हिला लें अपना, थोड़ा सा हाथ भी हिला सकते हैं, पर फोकस ऑन द ड्राइविंग।

0: शब्द बोला जाए ना तो मन में ठार होता है।
1: राम चाहे लीला चाहे लीला चाहे राम, गोलियों की रास लीला राम लीला। इनफैक्ट इसी फिल्म का एक और गाना है जिसमें है वर्ड राम, तो चलिए वो भी सुन लेते हैं।

ऑलराइट, लेकर चलते हैं आपको नेक्स्ट गाने की तरफ. दिस वन टेकन फ्रॉम द फिल्म क्रिश. याद होगी आपको 2013, ऋतिक रोशन एंड प्रियंका चोपड़ा.

was Raghupati Raghav Raja Ram. सुन रहे हैं आप शब्द का सेगमेंट एंड आई हैव रीच्ड द फाइनल सॉन्ग राइट नाउ. आई होप यू एंजॉयड आवर सॉन्ग सिलेक्शन टुडे. कमिंग अप नेक्स्ट इज अ गिव अवे फॉर राहत फतेह अली खान कॉन्सर्ट. सो बहुत ध्यान से सुनना है आपने नेक्स्ट 30 मिनट्स. और आप कंक्लूड करते हैं आज का शब्द सेगमेंट विद आवर लास्ट सॉन्ग फ्रॉम द मूवी आदि पुरुष. और इस गाने में भी ऑब्वियसली यू आर गोना हियर द वर्ड राम. आई होप यू विल एंजॉय दिस सॉन्ग एज वेल. प्रभास पर पिक्चराइज किया गया ये गाना.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Fun Asia 104.9 FM. Turn up the volume.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
7: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
8: Discover Tassels by Renu in Frisco. Designer ethnic wear at great prices.
9: From elegant saris, lehengas to Indo-Western fusion sets and men's ethnic wear. Find festive and wedding styles.
8: For exclusive deals and collections, join Renu's weekly Facebook Live or follow them on Insta.
9: Visit tasselsbyrenu.com or call 563-508-5673. That's 563-508-5673. Tassels by Renu. Dress beautifully, celebrate stylishly.
8: Marvin Das and Bindas Services present the 6th Annual South Asian Food Festival on 1st November from 12 noon to 8 p.m. at the Sound Venue in Koppel. Enjoy food, shopping, dance and live music with free entry and parking. Vendors and exhibitors, showcase your business to thousands. Call Marvin at 972-302-7012 to reserve your spot.
10: Hey, are you going to Ravi's Trade Market this year?
11: Of course. Where else can you check out new products, meet vendors, grab exclusive deals, giveaways, and save big for your store?
10: When is it?
11: Thursday, October 29th, Friday, October 30th, and Saturday, October 31st from 9 a.m. to 5 p.m. at Ravi's Import Warehouse on Harry Hines Boulevard in Dallas.
10: Perfect. I'll register ahead on shopravis.com. Ravi's 21st Annual Trade Market. Bigger deals, bigger opportunities, bigger business. Customers must bring their valid tax number and tobacco license.
12: Yo, wing walo, dhyan se suno. Ye sirf music nahi, hint hai. Because the best chicken in Dallas is finally in Irving. Crispy, juicy, bold. The chicken Dallas has been craving after Plano and Richardson. Sal's Hot Chicken is now in Irving, bringing the crunch, the flavor, and the heat. You heard chicken, we heard Sal's. Grand opening on 10th October.
13: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, khoobsurat libas khushiyon ko dugna kar deta hai.
14: Har khushi mein aapke saath, Manyavar Mohe. Traditional celebration wear for men, women and children, crafted with exquisite blended fabrics. Manyavar Mohe, located on Regent Boulevard off 635 East in Irving.
15: हर मोहब्बत की आवाज, the one and only living legend, राहत फतेह अली खान.
16: राहत फतेह अली खान.
8: Experience Once Upon a Time World Tour 2026. राहत फतेह अली खान और उनके बेटे शहजमान अली खान एक ही स्टेज पर.
15: Brought to you by Rehan Siddiqui, Dr. Yasmin Qureshi and True Payment Solutions. Friday, October 16, 8:30 p.m. Comerica Center, Frisco.
8: Grand sponsor Karahi Point Plano के exclusive concessions के साथ.
15: Tickets on Ticketmaster and Sulekha.com.
17: जग घूमे थारे जैसा न कोई.
18: Hi, this is Shraddha Pandit and you're tuned into Fun Asia Radio.
19: Welcome back to 104.9 FM Fun Asia Radio, bringing the community together. I am your host, Amreen Hasnat, and I'll be with you till 6 p.m. It is 4 minutes past 5 on this 11th of October, 2026. It's a Sunday evening, and I'm so glad you could join us. Thodi der pehle aapne ad mein suna hoga Rahat Fateh Ali Khan concert ke bare mein, right? Well, it is happening. Mark your calendars. Friday, October 16th at 8:30 p.m. at the Comerica Center in Frisco. Aur is concert mein वो परफॉर्म करेंगे अपने बेटे शाहजमान अली खान के साथ. कॉन्सर्ट का नाम है वंस अपॉन अ टाइम वर्ल्ड टूर. ऑलराइट, सो ये तो इन्फॉर्मेशन थी इन केस यू नीड टू बाय टिकट्स, बट गेस व्हाट, आई एम गिविंग अवे वन टिकट राइट नाउ. ऑलराइट, क्या करना है आपको टिकट जीतने के लिए? आपको सिर्फ और सिर्फ वही करना है जो आप आमतौर पे करते हैं, एज इन रेडियो सुनते हैं कि नहीं, पर अब आपको जरा दिल लगाकर, इसीलिए दिल से प्रोग्राम तो वैसे भी आप दिल से सुनते हैं ना, तो अब आपको थोड़ा कान लगाकर सुनना है, दिल से भी और कान से भी, और आपको सुनते रहना है टिल 5:30 PM. अभी बज रहे हैं 5:05. सो 5:30 तक अगर आप सुनते हैं ये सेगमेंट तो आप जीत सकते हैं वन टिकट टू द कॉन्सर्ट. ओके, अब मैं प्ले करूंगी राहत फतेह अली खान कॉकटेल स्पेशल. अच्छा, कॉकटेल क्या होता है? मिक्सचर, राइट, कॉम्बिनेशन ऑफ समथिंग. सो इसमें एक गाना होगा राहत फतेह अली खान का और एक गाना होगा किसी और फिल्म का. सो इट्स गोना बी दैट सिंपल. और आपने ट्रैक रखना है कि मैंने कितने गाने राहत फतेह अली खान साहब के प्ले किए और वो कौन से गाने थे. अब इतना ज़्यादा, अब ये तो आप समझ लें ओपन बुक एग्जाम हो गया आपका, सिलेबस, मतलब मैंने सवाल भी बता दिए, जवाब भी बता दिए, अब आपके लिए ये जीतना बहुत आसान हो गया है. और देयर इज नथिंग स्टॉपिंग यू. जस्ट रिमेंबर, आई एम गोना टेक दैट फर्स्ट कॉलर who calls me once I've played all the songs at the end of this segment. So speed is crucial. कि कितनी जल्दी आप कॉल करते हैं, कितनी जल्दी आपकी कॉल कनेक्ट होती है. Do not call me right now because segment का, you know, end अभी नहीं हुआ, अभी तो शुरुआत है. So आइए शुरुआत करते हैं और मैं हर गाने को properly introduce करूंगी, फिल्म का नाम बताऊंगी, गायक का नाम बताऊंगी, ताकि there is no confusion. So, जो सबसे पहला गाना आपको सुनवाने जा रही हूं वो पाप फिल्म से लिया गया है और इसे गाया है राहत फतेह अली खान साहब ने. आइए सुनते हैं. स्टूडियो का नंबर अगर अभी तक पहले आपके पास नहीं था, कभी आपको ख्याल नहीं आया कि कभी आप रेडियो स्टेशन कॉल करेंगे, और आज लेकिन आप कॉन्सर्ट का टिकट जीतना चाहते हैं, देन आई गो अहेड एंड गिव इट टू यू. राइट इट डाउन, 9725355555, 9725355555.

शेर शाह फिल्म से लिया गया ये गाना रियल लाइफ हस्बैंड वाइफ यानी कि सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा अडवाणी पर पिक्चराइज किया गया है। यू आर लिसनिंग टू द राहत फतेहअली खान कॉकटेल स्पेशल, जिसमें हर दूसरा गाना राहत फतेहअली खान साहब की आवाज में है। यू हैव टू कीप ट्रैक ताकि आप जीत सकें उनकी कॉन्सर्ट का टिकट एट द एंड ऑफ दिस 20 मिनट सेगमेंट।

कुणाल खेमू और स्माइली सूरी पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म कलयुग से लिया गया था। इन आवाज थी राहत फतेह अली खान साहब की।

खैरियत पूछो, चलिए पूछ लेते हैं क्या हाल है आपका। उम्मीद करती हूँ कि तमाम सुनने वाले जहाँ भी हैं खैरियत से हैं। फिल्म छिछोरे से लिया गया ये गाना सुशांत सिंह राजपूत और श्रद्धा कपूर पर पिक्चराइज किया गया था और आवाज़ थी अरिजीत सिंह की। आइए अब चलते हैं इस अगले गीत की तरफ, एंड ऑफ कोर्स दिस वन इज राहत फतेह अली खान।

सैफ अली खान पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म लव आजकल से लिया गया था। आवाज थी राहत फतेह अली खान साहब की। एंड दिस सॉन्ग इज बीइंग प्लेड एज पार्ट ऑफ दिस सेगमेंट राहत फतेह अली खान कॉकटेल स्पेशल, जिसमें हम एक के बाद एक प्ले कर रहे हैं राहत साहब के गाने। एंड इट्स कनेक्टेड टू ए टिकट गिव अवे व्हिच आई विल अनाउंस एट द एंड ऑफ दिस सेगमेंट एज इन विद इन The next 10 minutes. इससे पहले कि हम अगले गाने की तरफ बढ़े, I wanted to remind you guys that I actually have a full service event planning company. जी हाँ, अगर आपका कोई इवेंट आने वाला है and you need someone to help you, guide you, you know, find the right vendors, अब वो चाहे venue हो, photographer हो, dancers हो, या कुछ भी चाहिए हो आपकी इवेंट के लिए, आप मुझे कॉल कर सकते हैं 214-725-7466। अब अगर आपने कोऑर्डिनेशन काफी सारी खुद कर ली है एंड यू जस्ट वांट समवन टू मैनेज द डे ऑफ द इवेंट, आई कैन डू दैट फॉर यू एज वेल। और अगर वो भी आप खुद करना चाहते हैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ, आई कैन हेल्प यू एमसीइंग योर इवेंट, बिकॉज़ यू नो एवरी इवेंट्स नीड समवन हु इज काइंड ऑफ मैनेजिंग इट ऑन द माइक, एज इन मेकिंग ऑल द अनाउंसमेंट, इंट्रोड्यूसिंग द फैमिली मेंबर्स एटसेट्रा। जो भी है, आई कुड बी दैट पर्सन फॉर यू एज योर ऑफिशियल मास्टर ऑफ सेरेमनीज। जो भी है, इवेंट से रिलेटेड किसी भी किस्म की मदद आपको चाहिए, आप मुझे कॉल कीजिए। द नेम ऑफ माई कंपनी इज ऑसम इवेंट्स, बिकॉज आपको ऑसम इवेंट चाहिए तो ऑसम इवेंट्स को कॉल करना पड़ेगा। 214-725-7466 है मेरा नंबर।

All right, guys, it is time. फोन उठाइए, नंबर घुमाइए, 972-235-5555. बताइए मुझे, मैंने कितने गाने प्ले किए राहत फतेह अली खान साहब के, और वो कौन कौन से गाने थे? 972-235-5555.

0: कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनीश, बिल्कुल सही जवाब दिया आपने एंड यू वर द फर्स्ट कॉलर. पहला गाना था लागी मन की लगन फ्रॉम पाप, फिर जिया धड़क धड़क जाए फ्रॉम द मूवी कलयुग, आज दिन चढ़िया फ्रॉम लव आजकल, एंड द फोर्थ सॉन्ग वॉज जग घूमिया थारे जैसा ना कोई फ्रॉम द मूवी सुल्तान. एंड दोज वर द फोर सॉन्ग्स आई प्लेड एंड दैट गेट्स यू द फ्री टिकट टू एंजॉय राहत साहब्स कॉन्सर्ट ऑन अक्टूबर 16th. कॉन्ग्रेचुलेशंस.
1: Are you looking for a smarter approach to reducing taxes while building and preserving wealth? MyTime Equity, a registered investment advisory firm led by CPA Sudhir Pai, offers active portfolio management, structured notes, tax and financial planning, real estate strategies, AI and late-stage pre-IPO opportunities, and other alternative investments. Learn how a personalized strategy can help you pursue your financial goals. Visit MyTimeEquity.com or call 972-330-2771.
2: MyTime Equity is a fee-based registered investment advisory firm. This advertisement is for informational purposes only and does not constitute investment, legal or tax advice. Investing involves risk, including the possible loss of principal.
3: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
4: कौन सा?
3: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
4: अरे सारे तो सेम है.
3: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला.
4: ओ हाँ, ये तो अलग है.
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: As a Texas state legislator, James Tallarico has stood with the South Asian community and fought to lower our costs. He believes that being a Texan isn't about where you come from or how you pray. It's about how you love your neighbors. He's running for U.S. Senate to stand up for all Texans and end the corruption raising our prices. Vote to bring light and hope to Texas. Vote James Tallarico.
6: I'm James Tallarico, and I approve this message.
5: Paid for by Tallarico for Texas. It's the time to clock out.
7: It's the time to catch up. And most importantly, it's time to turn up the flame. Introducing Flame Hour at Tandoori Flame. जहाँ तंदूर की स्मोकी खुशबू, सिजलिंग फ्लेवर्स और चटपटे एपेटाइजर्स मेक एन ऑर्डिनरी वीकडे फील लाइक अ डिलीशियस सेलिब्रेशन. एवरी मंडे थ्रू फ्राइडे फ्रॉम 5 to 8 PM, ऑर्डर एनी टू एंट्रीज एंड गेट वन एपेटाइजर एब्सोल्युटली फ्री. ब्रिंग योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड योर एपेटाइट. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड. टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई.
8: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया.
9: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
8: नहीं.
9: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
8: नहीं.
9: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
8: वो भी नहीं.
9: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त.
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए. बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो. फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com. कॉल 972-618-8555. AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Granthi.
10: Services are subject to individual eligibility and applicable laws. Terms and conditions apply.
11: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं front page पे रहूँ.
12: Front page का तो पता नहीं, but तेरा page 3 में होना मेरी guarantee है.
11: कैसे?
12: Page 3 eatery?
11: No, not another restaurant again.
12: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
11: मतलब great food, great drinks, and great company, यानी कि मैं.
13: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
2: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
14: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास. 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में.
2: दैट मैजिक रिमूवल हो, लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो, गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी.
14: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से. नाउ इट्स योर टर्न. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर. कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
15: Order, order. Mr. Impressions, campaign का result.
16: Your Honor, हजारों लोगों ने ad देखा.
15: Miss Clicks,
17: 100 लोगों ने क्लिक भी किया.
18: Customers कितने आए?
16: Evidence found. Actual customer visit is less than 10.
17: Marketing mein clicks nahi, customers matter karte hain. With Smart Reach AI, reach local customers, even competitor visitors, across radio, digital, streaming TV and audio. Measure calls, bookings, redemptions and actual visits. Visit smartreachai.us. Smart Reach AI, turn attention into customers. Smart Reach AI, a Fun Asia Network product.

0: शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण पर पिक्चराइज किया गया ये गाना फिल्म पठान से लिया गया था। इट्स 45 मिनट्स पास्ट 5 इन दिस पार्ट ऑफ आवर शो ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज एंड दे मेक योर ड्रीम ऑफ ओनिंग ए होम अ रियलिटी एंड दे मेक इट सुपर सिंपल। ऑल यू गॉट टू डू इज कॉल हुसैन पंजवानी एट 972-245 लोन एंड ही विल गिव यू सो मेनी ऑप्शंस दैट यू हैव इन वेदर यू गेटिंग फर्स्ट time mortgage or you're wanting to refinance, he can do it for you. Give him a call or visit dreamhomemortgage.com.
1: मुझे जी ये वाली मुन्नी चलेगी।

And that was Mast Kalandar Sajana Ve Sajana, Rajkumar Rao aur Shehnaz Gill par picturized kiya gaya ye gana. Sun rahe the aap, taken from the film Vicky Vidya ka wo wala video. कौन सा वाला वीडियो है मुझे तो नहीं मालूम, मैंने तो वो मूवी भी नहीं देखी. खैर अब हमारे जाने का वक्त हो गया है, जाते जाते दो तीन गाने बैक टू बैक प्ले करती हूँ. होप यू विल लाइक देम एंड ऑफ कोर्स आई एम ट्राइंग टू कीप इट अप बीट, आफ्टर ऑल इट्स संडे, बट आई नो क्वाइट अ फ्यू स्कूल्स आर क्लोज टुमारो, सो या लॉन्ग वीकेंड.

एंड रैपिंग अप विद दिस लास्ट सॉन्ग होगी आपसे अब मुलाकात ऑन सैटरडे सेम प्लेस सेम टाइम यानी कि राइट हियर ऑन 104.9 एफएम बिटवीन 3:30 एंड 6 पीएम एंड ऑन संडे बिटवीन 3 एंड 6 पीएम दिस इज अमरीन अस्नाद साइनिंग ऑफ फॉर दिल से

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com.
6: Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, a division of Brazos National Bank.
7: Moments don't fade. They echo like a melody that never leaves you. And in those moments, what you wear becomes a part of that melody. One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. Timeless craftsmanship, unmatched elegance, and stunning bridal collections. Now in Main Street, Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
8: Call 857-891-8942 today.
9: अरे वो केक आया क्या?
10: डीजे कौन हैंडल करेगा?
9: डिकॉर्ड वाले को कॉल किया,
10: बैंड बजाने से पहले मेरा ही बैंड बज गया।
9: रिलैक्स, ऑसम इवेंट्स को कॉल किया।
10: ऑसम इवेंट्स?
9: हाँ भाई, वेडिंग हो, बर्थडे बैश, कॉर्पोरेट गाला या फुल ऑन कॉन्सर्ट नाइट, अमरीन हसनात एंड अ टीम विल हैंडल एवरीथिंग।
11: मतलब प्लानिंग टू एग्जीक्यूशन, टेंशन खत्म।
9: नॉट जस्ट दैट, बुक योर नेक्स्ट इवेंट एंड गेट फ्री प्रोफेशनल एमसीइंग बाय अमरीन हसनात हरसेल्फ।
8: कॉल नाउ एट 214-725-7466 214-725-7466 and turn your celebration into an awesome event.
12: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
13: हुजूर, आपको चुनना होगा, हम या ये बिरयानी।
14: बेगम, मोहब्बत अपनी जगह लेकिन बिरिस्ता की हैदराबादी बिरयानी अपनी जगह।
13: आखिर क्या है इस बिरयानी में?
14: दम में नरमी, मसालों में जादू और हर निवाले में नवाबी स्वाद।
15: Presenting Barista House by Prism Bar and Grill. Authentic Hyderabadi flavors and a truly Nawabi experience. North Indian favorites, delicious desserts and many more to explore. Denton's famous Barista House is now in Frisco, 6377 Custer Road, Frisco, Texas.
8: Happy hours Monday through Friday from 3 p.m. to 7 p.m.
15: Barista House, richness of biryani bliss.
16: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
17: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
18: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
19: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
18: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
20: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
21: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
22: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
8: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट। आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी।
21: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259।
15: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
18: कभी चक
0: चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
15: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
0: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
1: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Funasia Radio.

वो जब याद आए, बहुत याद आए। उनके सुरों की दास्तान, उनकी वो आवाज, उनके साथ गुजारे वो पल, सब मेरे दिल पे लिखे।

0: All right. Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you're having a beautiful Sunday evening with your friends, family, and loved ones. A special, special treat for all our DFW residents. We have the one and only Mr. Dabu Malik in the studio. Welcome back.
1: Hello.
0: Mr. Dabu Malik, sir. How are you feeling, sir?
1: Great.
0: Awesome, awesome. So, you've, of course, acted in Bazigar. You've played a young Bhishma in Mahabharat, composed films for decades, and you're a father of Arman and Amal Malik. What's the best part of your life?
1: I think the last credentials is getting more power, right?
0: Yeah.
1: Amal and Arman.
0: Yes. So to be honest with you, if that happens, it's a happy thing for every father, right? When the kids go above and beyond what you have achieved or what you have thought of, right?
1: You know, somewhere deep inside, mujhe hamesha se lagta tha ke ye aisa hoga. बहुत सारे लोगों को ऐसा लगा दैट आई एम यू नो सम काइंड ऑफ फैंटेसी और सम काइंड ऑफ लाला लैंड लेकिन मुझे पता नहीं कुछ एक अंदर से आवाज़ थी कि ये दोनों बच्चों के साथ कुछ अलग होगा क्योंकि माय फादर श्री सरदार मलिक हैड अ प्रोफेटिकल स्टेटमेंट अबाउट बोथ द किड्स कि ये मेरी लेगेसी को आगे ले जाएंगे तो इनको संगीत की दुनिया में जितना हो सके सिखाना
0: जी
1: और दोनों बच्चों को रियल एजुकेशन जो होती है म्यूजिक की जितनी हो सके
0: जी
1: हालांकि म्यूजिक तो एक समंदर है यू कैन नॉट कम्प्लीटली कैप्चर इट हर दिन एक सीखने का दिन होता है लेकिन हमने कोशिश की कि जितना वो सीख सकें उनको सिखाया एंड द रेस्ट एज यू नो यू हैव टच द हार्ट्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल
0: नॉट इन इंडिया बट ऑल्सो ऑल ओवर द वर्ल्ड एंड सो थ्री जनरेशन इन म्यूजिक इंडस्ट्री
1: जी
0: आई मीन दैट्स अ लॉट Right, even spending 1 year in the music industry is so challenging, and there are so many things that you have to achieve. Ye sir, kaise achieve kiya as a family?
1: I think we are just blessed. Of course, Papa's thing is very big in terms of what do you say? His legacy is very strong.
0: Yeah.
1: His contribution to music and creativity was very, very high. So maybe commercial success unhone nahi dekhi. तो कहीं वो एक इंस्पिरेशन अनु भाई के लिए भी था कि प्रूव करके दिखाना है कि वी आर द चिल्ड्रन ऑफ दैट लेगेसी ऑफ सरदार मलिक एंड और उस तरह से ये चीज़ चलती रही आगे एंड आई यू नो वाज आई डैबल्ड इन एक्टिंग मैंने बहुत सारी रोल्स किए बाजीगर तिरंगा बेटा हो तो ऐसा महाभारत
0: यस
1: एंड आई वन डे हैपन टू मीट आई ऑलवेज मेंटेन दैट got a chance to meet Salim Khan saab, Salman's father.
0: Galaxy Apartments.
1: Yes. And I think that was a turning point where he, you know, asked me to brace music as

0: वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन. सर, हम फिल्म्स के बारे में बात कर रहे थे. विच फिल्म म्यूजिक इज वेरी क्लोज टू योर हार्ट? यू हैव डन मेनी, बट विच वन इज दैट स्पेशल वन दैट स्ट्रक द कॉर्ड?
1: सी, द एक्चुअली देयर आर टू सॉन्ग्स व्हिच आई थिंक डिफाइंड माय फर्स्ट फेज ऑफ म्यूजिक. वन वाज द ब्लॉकबस्टर थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी, व्हिच वी आर गोइंग टू हियर इमीडिएटली आफ्टर दिस. एंड द फिल्म दैट डिड नॉट रियली डू वेल वाज जिंदगी का सफर, जिसमें एक मेरा गाना था ए चांद खूबसूरत, सन बाय सोनू निगम, विच वॉज वेरी क्लोज टू माई हार्ट. एंड वन संग बाय हरिहरन, जमाने में सभी को मिलते हैं गम घबराना. तो दीज थ्री सॉन्ग्स बिकेम माई डिफाइनिंग थिंग. एंड आई थिंक थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी, जितने भी लोग आज सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को, प्लीज सुनिए कि डब्बू मलिक का पहला वो गीत जिसने उसकी पहचान पूरी तरह बनाई, थोड़ा सा प्यार थोड़ा है बाकी.
0: सर जी, मैं एक बात कहना चाहता हूँ इस गाने के बारे में. ये गाना चैनल वी, MTV, रेडियो स्टेशन, हर जगह बजता था. बट सर, ये टीवी सीरीज में कितना बजा है सर ये गाना?
1: आई थिंक एकता कपूर
0: ने तो ये गाना घिस दिया है सर.
1: लिरिक्स चेंज करके पूरा किया है.
0: अमेजिंग. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स प्ले द सॉन्ग थोड़ा सा प्यार हुआ है थोड़ा है बाकी,
1: बाय डब्बू मलिक.
0: बाय डब्बू मलिक.

0: Welcome back, ladies and gentlemen. So, sir, to continue our conversation, you went independent in 2020 with songs Main Jo Chala, Humko Unse. Sir, why go independent? Why take that route? And what made you make that decision?
1: So, usme bhi ek balanced thinking thi. Amal, as a composer, was working in the film industry. Arman was singing. And I did not want to be that father, you know, me too. Main bhi aana chahta hoon. Mujhe bhi gaana do. Main bhi composer banna chahta hoon. Main bhi gaana. To maine kahin mere dil mein thi ki kuch mere 10-12 gaane jo hain, wo main khud apne channel pe release karun. And थिक कोविड के अंदर, मतलब के मेन कोविड के अंदर इस कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट हुई, ये गाने मेरे बने. पहला गाना मैंने सुनिधि चौहान के साथ किया, कुछ ख्वाब तेरे संग देखे हैं, यू नो वी कैन हियर दैट आल्सो, कुछ ख्वाब. एंड वहाँ से ये इंडिपेंडेंट का जो जिस तरह से मेरा एसोसिएशन एवॉल म्यूज़िक के साथ हुआ, जिस द सोनी म्यूज़िक का विंग है और उन लोग मेरे डिस्ट्रीब्यूटर बने और जिस तरह से मेरे ये गाने सब जगह बजने लगे, तो मेरी एक ड्रीम जो थी जिसके पीछे कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग यू नो होल्ड नहीं थी, जो मेरे दिल में था वो मैं गाने बना रहा था, गा रहा था. एंड आई गॉट अ यू नो काइंड ऑफ जंप स्टार्ट टू डू इट. तो मैं अपने फैमिली से या अपने बच्चों से, बिकॉज आई एम नॉट दैट पर्सन हु वुड जस्ट यू नो जंप इनटू द थिंग कि जी मुझे भी गाने करने हैं, मुझे भी संगीतकार बनना है. एंड आई जस्ट टुक अ बैक सीट. बट उस बैक सीट में इतना बड़ा काम हो गया कि MWM एंटरटेनमेंट एज अ लेबल स्टार्टेड. एंड टुडे वी आर 82 सॉन्ग्स ओल्ड. And we're looking forward to complete our 100 songs as independent.
0: Amazing.
1: And which everybody has sung. Sunidhi Chauhan has sung for me. Amal has sung. Arman has sung. Alka Yagnik ji ke saath gaane ka jo dream tha. Jaise aapne thoda sa pyar thoda suna. Woh mera dream tha. Main Alka ji ke saath gaun. Lekin us zamane ke popular singer Udit Narayan aur Alka ji the. To iske un pe record hua tha. Utne 20 saalon ke baad phir maine ye gaana. Ek gaana mere aur Alka ji ke saath record kiya aur कोई मेरी रोक टोक नहीं थी और MWM स्टार्ट हो गया.
0: अमेजिंग अमेजिंग. वी आर गोना बी प्लेइंग एन अमेजिंग सॉन्ग फ्रॉम MWM एंटरटेनमेंट, तुम यूं ही कभी.
1: माय फेवरेट.
0: ऑसम.

0: सर, इस गाने का अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा है, आई हाईली रिकमेंड पीपल डू दैट. और उसमें एक लाइन है, अ पार्ट ऑफ माइंड विल ऑलवेज बी वेटिंग फॉर यू, तुम यूं ही कभी मिलने हमें चले आओ. ब्यूटिफुल सॉन्ग. सर, एक बात कहनी थी सर. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बी अ फादर एंड टू बी अ म्यूजिक कंपोजर एट द सेम टाइम. सो यू हैव एस्टैब्लिश्ड योर किड्स एंड they are now known by their names, right? Not by their fathers or by grandfathers, but by their own name, which is an amazing feat, right, in this world. Sir, how do you balance जब उन्हें suggestion देना है, feedback देना है उनके गानों के बारे में, उनके work के बारे में, आप ऐसा father पहले आते हैं या as a musician पहले आते हैं?
1: सी, एज अ फादर मैं कॉन्स्टेंटली एक सर्च में रहता हूँ कि यू नो टू बैलेंस द सक्सेस ऑफ बोथ माई किड्स ऑन द सेम लेवल.
0: जी,
1: एक सिंगर जो होता है वो एक गाने को जब गाता है तो उसको पॉपुलैरिटी ज़्यादा मिलती है, म्यूज़िक डायरेक्टर और लिरिक्स राइटर को थोड़ा कम मिलती है. तो जब ये जर्नी में देख रहा था तो मुझे अरमान की सक्सेस जो स्टुपेंडस थी, लेकिन किस पे फाउंडेशन लेट था, अमाल की कंपोजिशन पे.
0: जी,
1: तो जब मेरे सजेशंस जाते हैं तो आपका सवाल बिल्कुल अच्छा है और गहरा भी है कि मुझे एज अ फादर एज अ म्यूजिशियन उस चीज़ को बैलेंस करना पड़ता है कि एक संगीतकार है जिसकी रिक्विजिट्स, जिसकी रिक्वायरमेंट्स, जिसकी सजेशंस एक डिफरेंट लेवल की होती हैं, और एक सिंगर है, गायक कलाकार है जिसकी अपनी एक परिभाषा है, एक अपनी डेफिनेशन है. तो मैं एक साथ दोनों को सजेशन नहीं दे सकता.
0: जी,
1: एक साथ ऐसी चीज़ें नहीं बोल सकता जिसके अंदर दोनों ही चीज़ों अलग अलग उसकी रिक्वायरमेंट है. तो जब मैं अरमान के साथ होता हूँ तो अरमान की पॉइंट ऑफ व्यू से मैं सोच के उसको समझता हूँ, समझाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ. जब अमल के साथ बैठता हूँ तो मैं एज अ कंपोजर, एज अ म्यूजिशियन मेरा जो है वो ज़्यादा फोकस करता है उसके अंदर. लेकिन यू आर सो राइट कि एक बाप होने के खातिर, एक फादर होने में मुझे ये सोचना पड़ता है कि मैं किस तरह से अरमान को भी उस लेवल तक लेके जाऊं ताकि वो यू नो व्हेन ही सैंग फॉर संजय लीला बंसाली, व्हेन ही रिसेंटली सैंग फॉर रहमान साहब एंड सलीम सुलेमान का एक गाना सब्र रिलीज हुआ है विच इज़ एन आउटस्टैंडिंग सॉन्ग, पीपल शुड लिसन सब्र. एंड ये सारी चीज़ें होते हुए अब एक कंपोजर है जिसकी आइडेंटिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है एंड जिसकी वजह से अमाल मलिक को मैंने बिग बॉस में यू नो सोचा कि उसे जाना चाहिए. और उसके बाद लोगों को तो पता ही नहीं था कि इतने बड़े बड़े गाने, इतने अच्छे अच्छे गानों को बनाने वाला कंपोजर अमाल मलिक था, उसका चेहरा नहीं था. एंड आई थिंक दैट इज वेयर द फादर्स जजमेंट वर्कड एंड आई कुड बैलेंस इट आउट. एंड इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन बिकॉज एक फादर के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है अपनी खुद की म्यूजिशियनशिप, अपनी खुद की पॉपुलैरिटी और फिर अपने बच्चों को बैलेंस करके आगे लाना.
0: अमेजिंग, अमेजिंग. थैंक यू सो मच सर. पहली बात तो आई हैव टू थैंक यू फॉर ग्रेशियसली गिविंग अस दिस टाइम. यू यू हैव अ वेरी वेरी बिजी स्केड्यूल, सो फॉर डूइंग दिस ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया फ्रॉम ऑल द फैमिली मेंबर्स ऑफ फनेशिया. थैंक यू सो मच सर. एक रैपिड फायर हो जाएगा सर, इफ इट्स ओके विथ यू.
1: लेट्स गो.
0: 2 मिनट रैपिड फायर. ओके, अमेजिंग. सो म्यूजिक स्टूडियो एट 3 AM या फिर 9 AM? कहाँ पे?
1: 3 AM.
0: 3 AM, ओके. किशोर कुमार साहब या मोहम्मद रफी साहब?
1: Oh my God! Of course, Kishore Kumar. But
0: sir, चाय या कॉफी म्यूजिक कंपोजिशन के टाइम क्या सबसे ज्यादा क्लिक करता है?
1: जागना है तो कॉफी.
0: जी, ओके, ऑलराइट. मुंबई की बारिश या मुंबई की ठंड?
1: मुंबई की बारिश, ऑफ कोर्स,
0: ऑफ कोर्स. सर, एक नया जनरेशन सिंगर, न्यू जेन सिंगर दैट यू थिंक दैट इज गोना बी एक्सेप्शनली वेल इन द कमिंग ईयर्स?
1: अरमान मलिक.
0: अरमान मलिक. सर, ये एक फादर बोला है सर. बट दैट्स अमेजिंग. ओके, और एक यंग कंपोजिशन, म्यूजिक कंपोजिशन व्हिच यू फील दैट्स गोना बी अमेजिंग इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स?
1: ऑफ कोर्स, आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ कंपोजर्स हु हैव यू नो मेड मी फील दैट दे हैव द पोटेंशियल टू डू लॉट ऑफ वर्क एंड द कैपेसिटी. आई थिंक इट्स विशाल मिश्रा.
0: ओह या, amazing.
1: So I'm a big fan of Amal Malik.
0: Ji,
1: but
0: of course
1: if you ask me ke ye log in mein se aage jane wale kaun hai, to definitely Vishal.
0: That's amazing. He's
1: and
0: doing well.
1: Let me not forget Durinder's composer.
0: Yes.
1: Shashwat, my God.
0: Oh wow,
1: what an
0: he's
1: insane
0: a powerhouse.
1: Powerhouse. What an, he turned around.
0: Yeah,
1: the way he has come around and made music, of course.
0: Yeah. Sir, ek superstar jisko aapko lagta hai yaar mujhe iska music dena hai.
1: अब मैं चाहता हूँ कि म्यूज़िक अगर मैं देना चाहता हूँ तो डेफिनेटली एक रोमांटिक फिल्म जिसके अंदर स्टार करते हैं रणबीर कपूर, विच इज अ प्योर आरके स्टाइल फिल्म, एंड रणबीर कपूर वुड बी माय चॉइस टू डू अ रोमांटिक प्योर आरके स्टाइल फिल्म लाइक बरसात.
0: अमेजिंग सर, एक शब्द हमारे डैलस वासियों के लिए जो आपको सब सुन रहे बेसब्री से सुन रहे, एक शब्द, दो तीन शब्द उनके लिए.
1: इतना ब्यूटीफुल शहर है आपका डैलस, डी से दिल, डी से डैलस.
0: थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच फॉर ग्रेशियसली कमिंग ऑन द स्टूडियो ऑफ द फेयर ऑन द फनेशिया, एंड वी वांट टू एंड ऑफ साइन ऑफ दिस सेगमेंट बाय प्लेइंग द अमेजिंग सॉन्ग बरसात बाय अरमान मलिक.